0: Trump has defended the professor, saying he followed Senate-approved procedures, has a strong service record, and was targeted by false reports in the media.
1: उस शाम को हमें सिर्फ कॉल आया प्रोफेसर का
2: जी,
1: अचानक से कॉल आया सर, रात 8 बजे की साहिल ने सुसाइड किया है ऐसा करके कॉल आया। इतने दिन होने के बाद उस प्रोफेसर ने माफी मांगी, वो प्रोफेसर बता रहे कि साहिल ने कुछ गलती नहीं की, फिर भी साहिल के साथ ऐसा क्यों हो गया? सर मैं आप लोगों से गुजारिश करती हूँ कि मेरे साहिल को न्याय मिलना चाहिए। अगर उसकी कुछ गलती नहीं थी फिर भी उसके साथ ऐसा क्यों हो गया? आज तक की ये पहली घटना नहीं है सर, और जो भी घटनाएं हुई है इस घटना के बारे में आज तक कोई इंक्वायरी नहीं बैठी गई, कुछ ही हुआ नहीं। लेकिन हमने जब ये बोला तो हम पर भी वो प्रेशर डाल रहे हैं।
3: साहिल ने माँ बाप को बोला था कि मम्मी यहाँ पे थोड़ा बच्चों पर अन्याय करते हैं, जातिवाद करते हैं। आज वो कॉलेज में अगर साहिल के आज भी फेवर में न्याय नहीं मिल रहा होगा तो आज भी साहिल पर अन्याय ही हो रहा। हमारा पूरा भरोसा है कि ये चौकसी सीबीआई करे।
4: कि विंगमेट थे आप लोग, दूसरे को जानते थे, एग्जाम में कॉपी किया गया, इसको लेकर आपको उसने क्या बताया?
5: उसने किसी से भी कुछ बात नहीं की, यही बात है, सब स्पेक्युलेशन है। कॉपी करने के बाद जब उसको बाहर लेके गए उसके बाद उसने किसी से बात नहीं की, तो किसी को कुछ नहीं पता कि क्या हुआ है। आई डोंट थिंक, जितना मैंने फर्स्ट ईयर में उसे देखा, कि हमने से किसी में या उसके दोस्तों में से किसी ने उसके कास्ट पर कभी भी रिमार्क किया हो। IIT बॉम्बे में ऐसा कल्चर है ही नहीं कि कोई किसी के कास्ट पर रिमार्क करता है, क्योंकि हम सारे जेई देव स्टूडेंट, हमें आइडिया है कि ये सब नहीं करना होता है, हम इतने एजुकेटेड हैं। एंड मुझे नहीं पता ये एंगल कहाँ से आया। डी ने कि ये सस्पेंशन था हमारा फर्स्ट पॉइंट, उसका भी रेजिग्नेशन नहीं था, क्योंकि जब तक वो गिल्टी प्रूफ नहीं हो जाते हम उनका रेजिग्नेशन नहीं मांगते।
0: And from Mumbai, let's switch tracks now to Bihar. A shocking case has come out where a minor boy and girl were allegedly surrounded and harassed by a group of men. Visuals from the incident show the girl being confronted, grabbed and assaulted, even as she pleaded with folded hands and urged the men to let her go. A masked man is seen grabbing the girl and dragging her away. The police have identified 7 people in the video that has been circulated and they've managed to arrest 3 so far. Now, the SIT has now been formed and manhunt has been launched in order to nab the 4 that are remaining, the 4 accused in the video that can be seen. The action comes after an FIR was registered under sections of BNS and POXO Act. The cops have also launched a digital crackdown on social media accounts which circulated the video, with takedown action being initiated against 32 such accounts. Let's just also get you more details coming in as far as this molestation case is concerned and the horror that's triggered a political storm now, with the opposition questioning the government over women's safety and policing in the state of Bihar. But the response from the government of Bihar has added fuel to the political battle. We have JDU State Chief Umesh Kushwaha calling such incidents sporadic. Then we also have Shravan Kumar, the minister from Bihar, who's saying that isolated crimes cannot be completely eradicated. The opposition has hit back hard. Tejaswi Yadav has accused the government of Bihar of Gunda Raj and said that women are not safe in the state. Then we have Rahul Gandhi also hitting out at the state government, criticizing what he described as normalization of mob vigilantism and also harassment. Now the BJP and the JDU have defended the administration, pointing to arrest and action against those involved.
6: चिटपुट घटना घटती है तो हम लोग उस पर सरकार संवेदनशील है, लेकिन वह समय देखिए 2005 की पहले का कैसा बिहार था। कोई घर से बाहर निकलते थे? किस तरह का बिहार था? क्या हालात था? लोग किसी तरह अपनी जिंदगी को काट रहे थे, ऐसा बिहार था ना। आज तो लोग कम से कम, ये कोई घटना घटी है तो उस पर प्रशासन कार्रवाई कर रही है, एक्शन ले रही है प्रशासन। जल्द से जल्द जो घटना का जो अंजाम दिया है, चाहे 12 से 12 कोई कितना बड़ा कोई अपराधी क्यों नहीं हो, वो जल्द ही पुलिस के कब्जे में आएंगे।
7: घटना की हम इवरनंदा

0: कम से कम ये कोई घटना घटी है तो उस पर प्रशासन कार्रवाई कर रही है, एक्शन ले रही है प्रशासन। जल्द से जल्द जो घटना का जो अंजाम दिया है, चाहे 12 से 12 कोई कितना बड़ा कोई अपराधी क्यों नहीं हो, वो जल्द ही पुलिस के कब्जे में आएंगे।
1: बहुत ही दुखद घटना है, हम लोग बहुत ही शर्मिंदा है जिस प्रकार की जो घटना हुई, लेकिन सरकार को कोई शर्म लाज नहीं रही। आप देखिएगा, यही सम्राट चौधरी कहते थे कि भाई रात में भी लड़कियां जो है अब घूम रही हैं फ्री होकर के, और पहले जो है लड़की लोग घूमती नहीं थी। ये जीता जागता उदाहरण है सम्राट चौधरी के बयान पर एक संदेह पैदा करने वाला घटना है।
2: घटना की हम तीव्र निंदा करते हैं सरकार की ओर से, और निश्चित रूप से वहाँ के पुलिस पदाधिकारी, प्रशासन के पदाधिकारी इसमें एक उचित और कठोर कदम उठाएंगे। मैं इस जैसे आपसे मीटिंग खत्म हो जाती है प्रेस कॉन्फ्रेंस, वहाँ के मैं पुलिस अधीक्षक से भी बात करूँगा जम्मू के, और सुनिश्चित उन्हें कहेंगे कि सुनिश्चित करें कि कोई भी इसके लिए जिम्मेवार हो, चाहे जो भी व्यक्ति हो, उसको चिन्हित करके उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करें।
3: Let's just get Prabhakar, my colleague, back again. Prabhakar, when we talk about the action that's been taken and now these statements that are really coming about, and this is really appalling given the fact that they're saying that these incidents can happen, these are sporadic, and that, they're kind of normalizing as far as, you know, keeping that tagline of, you know, Bihar not really being a very safe state, particularly when it comes to women, saying that, you know, they used to not go out at night earlier, so which is why these incidents didn't really happen. Now that they go out, such incidents can happen. Is the way the political parties are reacting.
4: Yeah, this is very weird, especially when it comes from a person like Umesh Kushwaha, who happens to be the national president of JDU. Remember, JDU happens to be the coalition partner out here in Bihar, and the statement he made was really, really appalling. He said that it's a choti moti ghatna, chutput ghatna is what he actually used the term, chutput ghatna hoti rehti hai, is one that is, and because of his statement, the government has come into the firing line. We are seeing the opposition actually taking up this issue, not only Tejaswi Yadav making out a statement, but also today at around 4 p.m., the Congress has organized a protest march here in Patna. So it's taking a political overturn as far as this Jammu incident is concerned, but the government is certainly on defensive. We saw the police headquarters here in Bihar making out a statement, the senior leaders, the ministers, they're all out there, and they're trying to do damage control over this entire episode which has happened out here. But the opposition has lapped up this issue, and they're certainly trying to corner the government over this.
3: A sporadic and isolated incident is how the government of Bihar is reacting. Thank you so much for joining us, Prabhakar, with the very latest. Let's just switch tracks and get you more details, and let's talk about, in fact, an exclusive conversation. This is with NDTV's, had with the Union Minister. We're talking about Hardeep Singh Puri, who has, in fact, talked about India's energy security, particularly LPG supply. The minister dismissed any rumours about shortages and directly addressed concerns over black marketing, hoarding and opposition criticism. Let's listen in to what the Petroleum Minister had to say.
5: देखिए, असलियत क्या है, दुनिया भर में सप्लाई चेन्स डिसरप्ट हुई, गैस सिलेंडर जो है दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ ए रिफाइनरी, आप कच्चे तेल को रिफाइनरी में डालते हैं, उससे एलपीजी बनती है। थ्रू शेयर कोइंसिडेंस हमारे जो बाहर के एलपीजी सप्लायर्स थे वो सारे हॉर्मुज की पेरिफेरी में थे, इमरातीज, यूएई, सऊदीज, कतारीज। जब हॉर्मुज बंद हुआ तो असर तो पड़ना था, बट द टेस्ट इज, दिस इज माय कहता हूं, व्हेन गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या क्या निर्णय लिए, हमने डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ा दी, हाँ, पहले 34,000 मेट्रिक टन पर डे थी, उसको उठा के हम 55,000-56,000 मेट्रिक टन, कहीं भी एलपीजी की शॉर्टेज नहीं हुई। अखिलेश जी, हमारे देश में 107,000 रिटेल पॉइंट्स हैं पेट्रोल पंप, कहीं भी ड्राई आउट नहीं हुआ।

0: क्लासिक केस ब्लैक मार्केटिंग का बताऊं तो ऐसा होता है, आप पहले हवा फैलाइए कि शॉर्टेज होने वाली है, फिर शॉर्टेज होने वाली है, फिर आप
1: होल्डिंग कीजिए।
0: नहीं होल्डिंग नहीं, अच्छे लोग समझदार, हमारी एक फैमिली फ्रेंड है वो गुरुग्राम में रहती हैं मल्टी स्टोरीड में, तो एक दिन उनका फोन आया कि पंजाबी में कह रही थी कि माता जी ने भी सिलेंडर 3-4 मंगवा लिया। तो मैंने कहा मैडम आपके यहाँ तो पाइप्ड गैस है, फिर वो पंजाबी में कहते हैं फिर भी मतलब अगर आपने सुना कि किसी चीज़ की शॉर्टेज होने वाली है तो माना होल्डिंग करनी शुरू कर, तो कुछ लोगों ने उस पर वो ट्रेडिंग शुरू करी। तो हम ये चाहते थे, देखिए एक सिलेंडर उज्ज्वला योजना में हमने देखा 10 करोड़, उसके 10 करोड़ 50 लाख लाभार्थी है, एक सिलेंडर एक अगर 4 लोग हों एक परिवार में तो कितनी देर चलेगा, 3 महीने चलेगा, किसी परिवार में 4 सिलेंडर से ज्यादा नहीं है। अगर किसी की इंडेंट रिक्वायरमेंट 4 सिलेंडर हो, वो 4 के 16 सिलेंडर खरीदने शुरू करते तो आप क्या कंक्लूजन निकालेंगे? मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं, दिस विल एवरेज पर डे इंडेंट एलपीजी सिलेंडर की हमारी 52 लाख थी, 52 लाख, जब यह अफवाहें फैलाए एक दिन में 90 लाख चली गई,
1: डबल, ऑलमोस्ट डबल,
0: डबल हो गया। तब हमने कहा कि भैया गलती कर रहे हो, जिस लोगों ने खुद उन्होंने सिलेंडर लेके, क्योंकि अगर आपको 4 चाहिए पर आपको से उज्ज्वला में 9 अलाउड है या जितने अलाउड है, आपने जितने 9 चाहिए थे वो भी ले लिए, फिर हमने उसको कर दिया और हमने सारी बुकिंग ऑलमोस्ट 98% ऑनलाइन हो गई है उसकी, तो मतलब स्कोप है ही नहीं।
2: Well, that was the petroleum minister, and with that, we're slipping into a short break. But on the other side, we're going to get you national awards coming up today. Not in Delhi for the very first time; they're going to be held in the state of Gujarat. We're going to get you details first. Let's slip into a short break.

0: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
1: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
0: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
2: डॉक्टर रोमा मैनुअल वाइंडिंग, चार लोगों के पास है
3: कुछ इससे भी अनोखा।
2: कमला पसंद, सिर्फ एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद पान मसाला।

0: involved in such an incident, it is also important that we ensure collective responsibility of the society with the government. It is important to, you know, talk to the members of the society so that nothing like this also happens. It's important we instill core values, we instill morals in the society that, you know, it's our collective responsibility to ensure a woman's safety.
1: All right, let's also switch tracks now. The investigation into the Veeramani Poxo case in Tamil Nadu is now expanding beyond the allegations of sexual abuse to examine how the case was handled by the police in the first place. Chief Minister Joseph Vijay has directed the Chennai police to take action against anyone found responsible for delaying or suppressing the investigation. So the police are now looking into the role and conduct of the investigators who handled this case previously. There's also a separate line of inquiry into alleged financial transactions. And among the key questions is the alleged 90 crore rupee money trail linked to this case. Investigators are examining whether the earlier probe was influenced, including allegations that money may have been paid to previous investigators. The political controversy has also intensified, with Law Minister CTR Nirmal Kumar questioning former Chief Minister M.K. Stalin over why action against Gem Granites founder R. Veeramani was allegedly halted despite video evidence in a child sexual abuse case. The DMK says the earlier investigation was not dropped, arguing that the police had deferred filing a final report because sufficient evidence was unavailable at the time. The government, meanwhile, is questioning how the case was handled and whether there was interference. All right, meanwhile, let's turn our attention now to the war in West Asia, which is raising fresh concerns about energy security with disruptions around the Bab al-Mandeb and the wider conflict posing risks to global trade and oil supplies. Against this backdrop, NDTV spoke exclusively to Union Petroleum and Natural Gas Minister Hardeep Singh Puri, and the ministers addressed the implications of the US tariff on India's imports of Russian oil and argued that global energy prices could rise if India were to stop playing its role as a stabilizing force in the market. In fact, in this exclusive conversation you're about to hear, the minister for the first time has also addressed the US tariff on India's Russian oil imports, responding to Donald Trump's appeal to Ukraine to avoid targeting Russian oil refineries, pointing to the potential implications for energy supplies as Europe heads into winter. So what does this mean for global oil prices, for India's energy security and the geopolitics of oil? Listen in.
2: अपने देश का नाम लिया कि इस देश से क्यों खरीद रहे हैं, मैं सीधे इस पर प्रश्न पर आ जाता हूं, क्योंकि अभी अमेरिका की कांग्रेस में कानून पास किया गया, राष्ट्रपति ट्रंप ने भी उस पर साइन कर दिए, 100% टैरिफ लगाने की बात की गई कि अगर रूस से आप कच्चा तेल खरीदते हैं तो उसको लेकर के पोजीशन क्या है, क्योंकि अभी हमारी सप्लाई काफी बड़ी है रूस से।
3: मैं आपको अखिलेश जी एक ही चीज कहना चाहूंगा, विदेश मंत्रालय ने जो स्टेटमेंट निकाली थी उसके बाद उसको पढ़ लीजिए, उस समय बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी होगी। और कई बार हम लोग कह चुके हैं, जयशंकर जी भी कह चुके हैं, अगर हमने किसी एक सोर्स से खरीदना शुरू किया तो उसका कारण ये है कि उससे ग्लोबल प्राइसेस भी कंट्रोल में रहे। अगर मान लीजिए कोई एक देश, मैं किसी में नाम नहीं लेता, 9-10 मिलियन बैरल एक दिन में बना रहा है और 9 मिलियन वैसे वो बेचना बंद कर दे, उसमें क्या होगा, दाम बढ़ जाएगा। दाम जो अभी बीच में चला गया था, पता नहीं आज कितना, 102-103 है, इट कैन गो टू 130-140, उसमें किसको, सबको नुकसान होगा। अभी प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक स्टेटमेंट किया है, उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति से ये अपील की है कि आप रशियन रिफाइनरीज को नहीं हिट करिए, क्योंकि आप वहां हिट करेंगे तो डीजल मिलना मुश्किल हो जाएगा। पर आप एक चीज बात करके चलिए, यूरोप अभी भी उनका विंटर सीजन आ रहा है, अभी भी वो अपनी हीटिंग के लिए वहां से एनर्जी ले रहे हैं। US is also importing, so मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा बिकॉज ये चीजें ज्यादा उचित होगा कि मेरे मित्र और साथी विदेश मंत्री जी बात करें, मेरा इस समय रोल है सप्लाई मैनेजमेंट ऑफिसर का।
1: Meanwhile, Hardeep Singh Puri also addressed concerns around rising fuel prices. When NDTV's managing editor Akhilesh Sharma asked him about whether any respite in the form of excise cuts is in sight, listen in to what the minister told NDTV.
2: अभी क्या स्थिति है, अभी आपको लगता है कि जो दाम बढ़ाए गए उनमें,
3: नहीं आप दाम बढ़ाए नहीं ना, अब यही तो अब वो कह रहे हैं। देखिए मैंने क्यों 2022 की बताया और फिर 2026 का बताया, आप दुनिया भर में देखिए, अमेरिका में डीजल का दाम एट रिटेल आउटपॉइंट $6.70 चला गया, हमारे बगल वाले देश में 440 रुपए लीटर हो गया पेट्रोल, शादी में एक डिश सर्व कर सकते हैं, 8 बजे आपको अपनी बिजली बंद कर रही है। और यहाँ पे क्या स्थिति है, कल मैं अमृतसर में था, परसों अमृतसर में था, दिल्ली में कोई एनर्जी कंजम्पशन कम नहीं हो रही। आवर एनर्जी कंजम्पशन, आवर रेट ऑफ ग्रोथ इज 3 times द ग्लोबल एवरेज। और क्यों हुआ,
2: क्यों किया ये?
3: माननीय प्रधानमंत्री जी ने 3 बार, तो मुझे याद है अभी ऑफ हैंड, नवंबर 2021 में, मई 2022 में, और उसके बाद 10 मार्च 2026 में सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी कम की है, 10 रुपए लास्ट पर कम हुई। और हमारी जो कंपनीज हैं वो अब्सॉर्ब कर रही हैं, जो पीएसयूज में जिनको ओएमसीज कहते हैं, मार्केटिंग कंपनीज, ऑयल मार्केटिंग कंपनी,
2: अंडर रिकवरी, लेकिन है
3: अंडर रिकवरी है, जबरदस्त है, पर हम उनको फिर कॉम्पनसेट करते हैं। अब एक साल में अंडर रिकवरी शायद एलपीजी की 28,000 करोड़ थी, हमने उनको 22,000 दिया, बट गुड कॉर्पोरेट सिटीजन, कुछ प्राइवेट सेक्टर लोगों ने तो इनकार कर दिया।
2: पर अभी भी क्या एक्साइज ड्यूटी कम करने का कोई स्कोप है?
3: अब तो बहुत कर दिया यार, अभी तो दाम अगर इंटरनेशनल हुए तो मुझे तो यही चाहूंगा कि इसी पे रखें, बढ़ाने ना पड़ जाए। देखिए बिकॉज ग्लोबल सिचुएशन फ्लूइड है इस समय, अब पहले सिर्फ हॉर्मोज का क्लोजर था, अब रेड सी में वो है, और बाकी चेको टेरिस का चल रहा है। तो मैं सिर्फ आपको बड़े कॉन्फिडेंस के साथ,
2: नहीं पर सर सवाल मेरा ये था, आपने कहा कि 3 बार पीएम साहब ने कहा कि एक्साइज ड्यूटी कम की जाए, तो इसके अलावा भी कुछ और उपाय अपनाया गया कि इसके चलते आपने
3: अभी तो
2: सप्लाई को आपने मेंटेन किया?
3: हमने सप्लाई को मेंटेन किया, किसी चीज की कमी नहीं हुई, अभी भी आगे चलते यही कोशिश रहेगी कि कोई सप्लाई डिसरप्शन ना हो। क्योंकि इस हमने कई जो साहब ने पीएम साहब ने कुछ फैसले लिए, हमने अपने सोर्सेज डाइवर्सिफाई कर दिए, 27 देशों से हम इंपोर्ट करते थे, अब 41 देशों से करते हैं। हम पहले कुछ देशों से नहीं खरीदते थे एनर्जी, अब खरीदते हैं। अब देखिए आपको मैं एग्जांपल दूं, यूनाइटेड स्टेट्स से हमने कभी एलपीजी नहीं खरीदी, जनवरी के महीने में, जनवरी 2026 में हमने ये निर्णय लिया कि इनसे भी लेंगे, और दोनों के साथ बातचीत के बाद बायलैटरल टारगेट हुआ 10% लेंगे एलपीजी उनसे। इस समय 67% अब खरीद रहे हैं
2: अमेरिका से
3: 67%। हाँ माना जाए कि उसका ओवरऑल फाइनेंशियल जो है कितना, कोई $3.5 billion के आसपास होगा। हम एलएनजी खरीद रहे हैं, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हम डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, और ये कुछ लोग निंदा करते हैं हम एक जगह से ज़्यादा खरीद रहे। भाई साहब, माननीय प्रधानमंत्री जी की एक जो पॉलिसी डायरेक्टिव है बिल्कुल क्लियर है, हमारे जो कंज्यूमर्स हैं, हमारे जो नागरिक हैं, भाई बहन हैं, उनको किसी तरीके का, किसी किस्म का कठिनाई नहीं उठानी पड़े, इसलिए एक्साइज ड्यूटी भी जहां कम करनी पड़ी वो कही। और अभी मैं रीजनेबली कॉन्फिडेंट हूं, अब युद्ध में कल क्या होगा आई कैन नॉट एंटिसिपेट, बट गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो कि ये जो पॉलिसीज हैं, हमारी रिफाइनिंग कैपेसिटी अच्छी है, तो इसमें हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, तो हमारी यही कोशिश रहेगी कि हमारे, और हम इस पे तो पॉलिसी क्लैरिटी है कि डोमेस्टिक कंज्यूमर नेशन कम्स फर्स्ट है, और हमारी एक्सपोर्ट कमिटमेंट्स भी इफेक्ट ना हो, यही कोशिश है।
1: Well, amid the war in West Asia, concerns over energy security do extend beyond crude oil to the availability of LPG in India as well. And on that note, Hardeep Singh Puri addressed concerns over LPG supplies, dismissing reports of shortages and responding to questions around black marketing as well, around hoarding and opposition criticism. So what is the government's assessment of LPG availability and how is it responding to concerns over supply disruptions? Well, listen in to what the minister said.
3: देखिए असलियत क्या है, दुनिया भर में सप्लाई चेन्स डिसरप्ट हुई, गैस सिलेंडर जो है दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ ए रिफाइनरी, आप कच्चे तेल को रिफाइनरी में डालते हैं, उससे एलपीजी बनती है। थ्रू शेयर कोइंसिडेंस हमारे जो बाहर के एलपीजी सप्लायर्स थे वो सारे हॉर्मूज की पेरिफेरी में थे, इमरातीज, यूएई, सऊदीज, कतारीज, जब हॉर्मोज बंद हुआ तो असर तो पड़ना था, बट द टेस्ट इज, दिस इज माई कहता हूं, व्हेन गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। पर माननीय प्रधानमंत्री जी की क्या क्या निर्णय लिए, हमने डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ा दी, हाँ पहले 34,000 metric tons पर डे थी, उसको उठा के हम 55,000-56,000 metric tons, कहीं भी एलपीजी की शॉर्टेज नहीं हुई। अखिलेश जी, हमारे देश में 1,07,000

0: रिटेल पॉइंट्स हैं, पेट्रोल पंप, कहीं भी ड्राई आउट नहीं हुआ।
1: कुछ बीच में जरूर अफवाहें उड़ाई गई थी,
0: अफवाह तो मैं अफवाहें पे आ रहा हूँ, अफवाहें पे, ओ जी इतनी लंबी लाइन लग गई है गैस स्टेशन के बाहर। मैंने कहा मेरे भाई गैस सिलेंडर तो पर्सनली जाना नहीं पड़ता, आप अपना फोन उठाइए, उसमें ऐप में करिए, आपके घर में 24 घंटे में पहुंच जाता है। तो देखिए गलत अफवाह फैलाने वाले में कोई कमी नहीं है,
1: पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हमें लगाने पड़े थे एलपीजी को लेकर।
0: मैं बताता हूँ, रिस्ट्रिक्शन ये लगाने पड़े थे कि कहीं जगह जैसे रूरल एरियाज में हमने जो सिलेंडर की रिप्लेसमेंट है, पहले मैं बता रहा हूँ रिस्ट्रिक्शन इसलिए लगाने पड़े क्योंकि ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो गई थी। आपको अगर क्लासिक केस ब्लैक मार्केटिंग का बताऊं तो ऐसा होता है, आप पहले हवा फैलाइए कि शॉर्टेज होने वाली है, फिर शॉर्टेज होने वाली है, फिर आप
1: होल्डिंग कीजिए।
0: नहीं, होल्डिंग नहीं, अच्छे लोग समझदार, हमारी एक फैमिली फ्रेंड है वो गुरुग्राम में रहती हैं मल्टी स्टोरीड में, तो एक दिन उनका फोन आया कि पंजाबी में कह रही थी कि माता जी ने भी सिलेंडर 3-4 मंगवा लिया। तो मैंने कहा मैडम आपके यहाँ तो पाइप गैस है, फिर वो पंजाबी में कहते हैं फिर भी मतलब अगर आपने सुना कि किसी चीज़ की शॉर्टेज होने वाली है तो माला होल्डिंग करनी शुरू कर, तो कुछ लोगों ने उस पर वो ट्रेडिंग शुरू कर दी। तो हम ये चाहते थे, देखिए एक सिलेंडर उज्ज्वला योजना में हमने देखा 10 करोड़ उसके 10 करोड़ 50 लाख लाभार्थी है, एक सिलेंडर एक अगर 4 लोग हों एक परिवार में तो कितनी देर चलेगा, 3 महीने चलेगा, किसी परिवार में 4 सिलेंडर से ज्यादा नहीं है। अगर किसी की इंडेंट रिक्वायरमेंट 4 सिलेंडर हो, वो 4 के 16 सिलेंडर खरीदना शुरू करते तो आप क्या कंक्लूजन निकालेंगे। मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं, दिस विल एवरेज पर डे इंडेंट एलपीजी सिलेंडर की हमारी 52 लाख थी, 52 लाख, जब यह अफवाहें फैलाए एक दिन में 90 लाख चली गई,
1: डबल
0: हो गया। तब हमने कहा भैया गलती कर रहे हो, जिस लोगों ने उन्होंने सिलेंडर लेके, क्योंकि अगर आपको 4 चाहिए पर आपको से उज्ज्वला में 9 अलाउड है या जितने अलाउड है, आपने जितने 9 चाहिए थे वो भी ले लिए, फिर हमने उसको कर दिया और हमने सारी बुकिंग ऑलमोस्ट 98% ऑनलाइन हो गई है उसकी, तो मतलब स्कोप है ही नहीं।
2: All right, let's turn our attention to the latest information coming in this morning. A fatal hit and run in Greater Noida has left a 40-year-old man dead and his wife injured. We're told the couple was traveling on a scooter when a Thar SUV collided with them in the Cherry County Chowki area under Bisrak police station. The deceased has now been identified as Neeraj. His wife is undergoing treatment and police have now recovered the Thar as well, visuals of which are on your screens at the moment. The driver remains absconding, we're given to understand, and according to the Central Noida DCP, 4 people were inside that vehicle. 2 individuals were reportedly caught and assaulted by a crowd before fleeing the scene. And now an FIR has been registered. For more on the investigation, listen in to Akhil Jameel's report.
3: Last evening, an unfortunate incident has come to light from Gautam Buddha Nagar's Bisrak area. Behind me, you can see a vehicle. This is a Thar vehicle which has mowed down an individual who was coming from the side of Bisrak police station towards the side of One Murthy Chowk. At that point in time, this unfortunate tragedy has taken place, and you can see the right portion of this Thar SUV vehicle has completely got dismantled. Not only the right side of this vehicle, apart from that, you see the front end of this vehicle has also got dismantled, and right now you can see the number of this vehicle. This is UP14GB7267. So this seems to be a brand new Thar vehicle. You can see the ribbon over here, the red color ribbon can also be seen. At this point in time, the investigation is currently underway right now by the Bisrak police team, and what we have got to learn that the victim in this case has been identified as 40-year-old Neeraj from Chipiana. So when he was taken to a nearby hospital during the treatment, while the doctors were doing treatment, at that point in time he lost the consciousness and later on died. And if you see, not only Neeraj, apart from that Neeraj's wife was also present on that very scooty when that unfortunate tragedy has taken place. She is being treated right now at that very hospital, but the condition and the impact of the collision can be seen, that the right portion of this vehicle has completely got dismantled from its actual structure.
2: All right, on that note, let's turn our attention to breaking news coming in from Telangana at the moment. 2 infants have died after a fire broke out inside the special newborn care unit at RIMS Hospital in Adilabad in Telangana. 28 children were reportedly evacuated.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।

0: going for any patrolling if it is required. But this advisory, which has been issued by the state government and by the Punjab police, it has already sparked a political row in the state of Punjab, and it has been seen all the opposition leaders, including the BJP leader Sunil Jakhad, Congress leader Amrinder Singh Rajavading, and Akali Dal leader Bikramjit Singh Majithia, they have already raised multiple questions over law and order situation in the state of Punjab. What it is learnt from the sources also, this advisory has been issued immediately after the killing of a cop in Amritsar who was murdered there. And after that, it has been seen that multiple precautions had been advised to the cops that they should follow as per the advisory. But now all the opposition leaders, they are raising this question, saying that if the cops are not safe in the state of Punjab, who are supposed to take care of the common residents in the state of Punjab, it seems that law and order is not intact in the state of Punjab. So let's see that how the ruling government is going to react and what type of defense the top police officer are going to give. But it has sparked a political row in state of Punjab, and all the opposition party, they are condemning and criticizing. They are raising multiple questions over this law and order problem in the state of Punjab. Multiple times it has been seen this, the state government as well as the top police officer, they defended itself and saying that law and order is intact, and immediately after crime they are able to trace all the accused who are involved in various crime which are happening in the state of Punjab. But now this advisory which has been issued, it has raised multiple questions over the Punjab police as well as the state government. So we have to wait and watch how the state government is going to defend the about this advisory which has been issued, and if this advisory which has been issued to the cops, it seems that all is not well in the state of Punjab. Back to studio.
1: State of affairs to note ahead of polls that are scheduled in 2027. We'll of course continue to track the situation prevailing in Punjab with you, Gurpreet. Thanks so much. All right, on that note, let's turn our attention now to breaking news developments we are tracking from Karnataka. Well, Karnataka's financial constraints could put a proposed 15,000 crore rupee rural connectivity scheme under pressure. In observations dated the 17th of September, the State Finance Department has cautioned that taking up new projects without identifying the required funds could worsen cash flow pressures and affect ongoing development works. I'm going to break down the details for you here. The department, you see, points to a fiscal deficit of 2.95% for 2026-27, a revenue deficit of 22,957 crore rupees, and cumulative liabilities at 24.94% of the GSDP. Now, it also flags pending works costing more than 2 lakh crore rupees, I beg your pardon. So it's flagged pending works costing more than 2 lakh crore rupees and outstanding bills of 36,136 crore rupees across four major departments. And you know, crucially, the concern is not simply whether Karnataka needs better rural connectivity, it's whether the government has the financial capacity to make new commitments while existing projects, unpaid bills, and possible drought relief requirements compete for the same resources, as we have seen in the past fortnight as well. Despite the finance department's reservations, the proposal has been directed to the cabinet along with its observations following the chief minister's order. Now, at this point, let's go across to Deepak to find out what exactly the Karnataka finance department has objected to. Deepak, break down the latest developments for us.
2: We should note that as far as the finances of Karnataka and the struggle that there is to, of course, fund new projects is not something new. Now, there is a new project that the government, of course, is planning. This is as far as rural roads are concerned. They want to spend about 15,000 crores for it. They've sought the opinion as this is the normal protocol that, of course, is followed whenever there is any sort of new project that the government wants to come up with, and especially it involves a whole lot of money. They do, of course, go to the finance department for its suggestions. In its opinion, of course, the finance department has cited that, you know, the government should really be wary about the new projects, considering the amount of expenditure that there is already on subsidies, on the pending payments that need to be made, on the 5 guarantee schemes, and already, you know, the infrastructure projects are currently that are ongoing and how much money that is required for that. And based on this, they've expressed their reservations about, you know, going ahead with a new projects that, the project that will involve, again, a whole lot of money, and they're really citing concerns about financial strain hitting the government and hitting the exchequer if they actually go ahead with it. Now, the Karnataka cabinet, of course, will be presented with this the note of the finance department. How they'll really consider this is going to be very interesting. The Karnataka chief minister, of course, after taking over, also has announced various programs that, again, you know, has put more pressure on the finances of the state, considering that there has already been 5 guarantees. Now, of the, you know, a few more announcements that came in a couple of months ago. So what really happens with Karnataka and its developmental projects in the future, if, you know, the financial condition continues to remain like this, is a concern that remains. We'll really have to see how the state government deals with this scenario in the weeks to come.
1: We'll, of course, continue to track all the finer details with you, Deepak. Thanks so much for joining us. All right, let's switch tracks now to the war in West Asia, which is raising fresh concerns about energy security, with disruptions around the Bab al-Mandeb and the wider conflict posing risks to global trade and, of course, oil supplies too. Now, against this backdrop, NDTV has spoken exclusively to Union Petroleum and Natural Gas Minister Hardeep Singh Puri, and the minister has addressed the implications of the US tariff on India's imports of Russian oil and argued that global energy prices could rise if India were to stop playing its role as a stabilizing force in the market. In the exclusive conversation you're about to hear, the minister for the first time addressed the US tariff on India's Russian oil imports, pointing to the potential implications for energy supplies as Europe as well heads into winter. So what does this mean for global oil prices, crucially for India's energy security and the geopolitics of oil? Listen in to what Mr. Puri told us.
3: आपने देश का नाम लिया कि इस देश से क्यों खरीद रहे हैं, मैं सीधे इस पर प्रश्न पर आ जाता हूं, क्योंकि अभी अमेरिका की कांग्रेस में कानून पास किया गया, राष्ट्रपति ट्रंप ने भी उस पर साइन कर दिए, 100% टैरिफ लगाने की बात की गई कि अगर रूस से आप कच्चा तेल खरीदते हैं तो उसको लेकर के पोजीशन क्या, क्योंकि अभी हमारी सप्लाई काफी बड़ी है रूस से।
4: मैं आपको अखिलेश जी एक ही चीज कहना चाहूंगा, विदेश मंत्रालय ने जो स्टेटमेंट निकाली थी उसके बाद उसको पढ़ लीजिए, उस समय बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी होगी। और कई बार हम लोग कह चुके हैं, जयशंकर जी भी कह चुके हैं, अगर हमने किसी एक सोर्स से खरीदना शुरू किया तो उसका कारण ये है कि उससे ग्लोबल प्राइसेस भी कंट्रोल में रहें। अगर मान लीजिए कोई एक देश, मैं किसी में नाम नहीं लेता, 9-10 मिलियन बैरल एक दिन में बना रहा है और 9 मिलियन वैसे वो बेचना बंद कर दे, उसमें क्या होगा, दाम बढ़ जाएगा। दाम जो अभी बीच में चला गया था, पता नहीं आज कितना, 102-103 है, इट कैन गो टू 130-140, उसमें किसको, सबको नुकसान होगा। अभी प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक स्टेटमेंट किया है, उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति से ये अपील की है कि आप रशियन रिफाइनरीज को नहीं हिट करिए, क्योंकि आप वहां हिट करेंगे तो डीजल मिलना मुश्किल हो जाएगा। पर आप एक चीज बात करके चलिए, यूरोप अभी भी उनका विंटर सीजन आ रहा है, अभी भी वो अपनी हीटिंग के लिए वहां से एनर्जी ले रहे हैं। US is also importing, so मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा बिकॉज ये चीजें ज्यादा उचित होगा कि मेरे मित्र और साथी विदेश मंत्री जी बात करें। मेरा इस समय रोल है सप्लाई मैनेजमेंट ऑफिसर का।
1: You must also know that Hardeep Singh Puri also addressed concerns around rising fuel prices. When my colleague Akhilesh Sharma asked him about whether any respite in the form of excise cuts is on the radar, listen in to what the minister told NDTV.
4: देखिए असलियत क्या है, दुनिया भर में सप्लाई चेन्स डिसरप्ट हुई, गैस सिलेंडर जो है दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ ए रिफाइनरी, आप कच्चे तेल को रिफाइनरी में डालते हैं उससे एलपीजी बनती है।
3: तो अभी क्या स्थिति है, अभी आपको लगता है कि जो दाम बढ़ाए गए उनमें,
4: नहीं आप दाम बढ़ाए नहीं ना, अब यही तो अब वो कह रहे हैं। देखिए मैंने क्यों 2022 की बताया और फिर 2026 का बताया, आप दुनिया भर में देखिए, अमेरिका में डीजल का दाम एट रिटेल आउटपॉइंट $6.70 चला गया, हमारे बगल वाले देश में ₹440 लीटर हो गया पेट्रोल, शादी में एक डिश सर्व कर सकते हैं, 8 बजे आपको अपनी बिजली बंद कर रही है। और यहाँ पे क्या स्थिति है, कल मैं अमृतसर में था, परसों अमृतसर में था, दिल्ली में कोई एनर्जी कंजम्पशन कम नहीं हो रही. आवर एनर्जी कंजम्पशन, आवर रेट ऑफ ग्रोथ इज 3 times द ग्लोबल एवरेज. और क्यों हुआ,
3: क्यों किया ये सवाल?
4: माननीय प्रधानमंत्री जी ने 3 बार, तो मुझे याद है अभी ऑफ हैंड, नवंबर 2021 में, मई 2022 में, और उसके बाद 10 मार्च 2026 में सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी कम की है. 10 रुपए लास्ट पर कम हुई. और हमारी जो कंपनीज हैं वो अब्सॉर्ब कर रही हैं, जो पीएसयूज में जिनको ओएमसीज कहते हैं, मार्केटिंग कंपनीज, ऑयल मार्केटिंग कंपनी.
3: अंडर रिकवरी लेकिन है,
4: अंडर रिकवरी है, जबरदस्त है, पर हम उनको फिर कॉम्पनसेट करते हैं. अब एक साल में अंडर रिकवरी शायद एलपीजी की 28,000 करोड़ थी, हमने उनको 22,000 दिया. बट गुड कॉर्पोरेट सिटीजन, उस प्राइवेट सेक्टर लोगों ने तो इनकार कर दिया.
3: पर अभी भी क्या एक्साइज ड्यूटी कम करने का कोई स्कोप है?
4: अब तो बहुत कर दिया यार. अभी तो दाम अगर इंटरनेशनल हुए तो मुझे तो यही चाहूंगा कि इसी पे रखें, बढ़ाने ना पड़ जाए. देखिए, बिकॉज ग्लोबल सिचुएशन फ्लूइड है इस समय. अब पहले सिर्फ हॉर्मोज का क्लोजर था, अब रेड सी में वो है, और बाकी चेको टेरिस का चल रहा है. तो मैं सिर्फ आपको बड़े कॉन्फिडेंस के साथ.
3: नहीं पर सर, सवाल मेरा ये था, आपने कहा कि 3 बार पीएम साहब ने कहा कि एक्साइज ड्यूटी कम की जाए, तो इसके अलावा भी कुछ और उपाय अपनाया गया कि इसके चलते आपने सप्लाई को आपने मेंटेन किया?
4: हमने सप्लाई को मेंटेन किया, किसी चीज की कमी नहीं हुई. अभी भी आगे चलते यही कोशिश रहेगी कि कोई सप्लाई डिसरप्शन ना हो, क्योंकि इस हमने कई जो साहब ने पीएम साहब ने कुछ फैसले लिए, हमने अपने सोर्सेज डाइवर्सिफाई कर दिए. 27 देशों से हम इंपोर्ट करते थे, अब 41 देशों से करते हैं. हम पहले कुछ देशों से नहीं खरीदते थे एनर्जी, अब खरीदते हैं. अब देखिए, आपको मैं एग्जांपल दूं, यूनाइटेड स्टेट्स से हमने कभी एलपीजी नहीं खरीदी. जनवरी के महीने में, जनवरी 2026 में हमने ये निर्णय लिया कि इनसे भी लेंगे, और दोनों के साथ बातचीत के बाद बायलैटरल टारगेट हुआ 10% लेंगे एलपीजी उनसे. इस समय 67% अब खरीद रहे हैं
3: अमेरिका से
4: 67%. हाँ, माना जाए कि उसका ओवरऑल फाइनेंशियल जो है कितना, कोई $3.5-3 billion के आसपास होगा. हम एलएनजी खरीद रहे हैं, ठीक है. तो मैं ये कह रहा हूँ कि हम डाइवर्सिफाई कर रहे हैं. और ये कुछ लोग निंदा करते हैं, हम एक जगह से ज़्यादा खरीद रहे. भाई साहब, माननीय प्रधानमंत्री जी की एक जो पॉलिसी डायरेक्टिव है बिल्कुल क्लियर है. हमारे जो कंज्यूमर्स हैं, हमारे जो नागरिक हैं, भाई बहन हैं, उनको किसी तरीके का, किसी किस्म का कठिनाई नहीं उठानी पड़े. इसलिए एक्साइज ड्यूटी भी जहां कम करनी पड़ी वो कही. और अभी मैं रीजनेबली कॉन्फिडेंट हूं. अब युद्ध में कल क्या होगा आई कैन नॉट एंटिसिपेट, बट गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो कि ये जो पॉलिसीज हैं, हमारी रिफाइनिंग कैपेसिटी अच्छी है, तो इसमें हम एक्सपोर्ट भी करते हैं. तो हमारी यही कोशिश रहेगी कि हमारे, और हम इस पे तो पॉलिसी क्लैरिटी है कि डोमेस्टिक कंज्यूमर नेशन कम्स फर्स्ट है, और हमारी एक्सपोर्ट कमिटमेंट्स भी इफेक्ट ना हो, यही कोशिश.
1: Well, you must note that oil prices have risen for the first time in 6 sessions as traders monitored potential discussions between the United States and Iran at the United Nations General Assembly following a recent increase in shipments through the Strait of Hormuz. Brent crude futures for November delivery were up $1.14 or 1.1%. Early trading on Tuesday, these are the numbers from then. And amid the war in West Asia, concerns over energy security extend beyond crude oil to the availability of LPG in India as well. And Minister Puri has addressed concerns over LPG supplies, dismissing reports of shortages and also responding to questions around black marketing, around hoarding and opposition criticism. So what is the government's assessment of LPG availability and how is it responding to concerns over supply disruptions? Listen in to what Mr. Puri told us.
4: देखिए, असलियत क्या है? दुनिया भर में सप्लाई चेन्स डिसरप्ट हुई. गैस सिलेंडर जो है, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ ए रिफाइनरी. आप कच्चे तेल को रिफाइनरी में डालते हैं, उससे एलपीजी बनती है. थ्रू शेयर कोइंसिडेंस हमारे जो बाहर के एलपीजी सप्लायर्स थे वो सारे हॉर्मूज की पेरिफेरी में थे. एमिरातीज, यूएई, सऊदीज, कतारीज. जब हॉर्मूज बंद हुआ तो असर तो पड़ना था. बट द टेस्ट इज, दिस इज माई कहता हूं, वेन आर गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग. पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या क्या निर्णय लिए? हमने डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ा दी. हाँ, पहले 34,000 मेट्रिक टन पर डे थी उसको उठा के हम 55,000-56,000 मेट्रिक टन, कहीं भी एलपीजी के शॉर्टेज नहीं हुई। अखिलेश जी, हमारे देश में 107,000 रिटेल पॉइंट्स हैं पेट्रोल पंप, कहीं भी ड्राई आउट नहीं हुआ।
3: कुछ बीच में जरूर अफवाहें उड़ाई गई थी,
4: अफवाह तो मैं अफवाहें पे आ रहा हूँ, अफवाहें पे, ओ जी इतनी लंबी लाइन लग गई है गैस स्टेशन के बाहर। मैंने कहा मेरे भाई गैस सिलेंडर तो पर्सनली जाना नहीं पड़ता, आप

0: अपना फोन उठाइए, उसमें ऐप में करिए, आपके घर में 24 घंटे में पहुंच जाता है। तो देखिए, गलत अफवाह फैलाने वाले में कोई कमी नहीं है,
1: पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हमें लगाने पड़े थे एलपीजी को लेकर।
0: मैं बताता हूँ, रिस्ट्रिक्शन ये लगाने पड़े थे कि कहीं जगह जैसे रूरल एरियाज में हमने जो सिलेंडर की रिप्लेसमेंट है, पहले मैं बता रहा हूँ, रिस्ट्रिक्शन इसलिए लगाने पड़े क्योंकि ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो गई थी। आपको अगर क्लासिक केस ब्लैक मार्केटिंग का बताऊं तो ऐसा होता है, आप पहले हवा फैलाइए कि शॉर्टेज होने वाली है, फिर शॉर्टेज होने वाली है, फिर आप
1: होल्डिंग कीजिए।
0: नहीं, होल्डिंग नहीं, अच्छे लोग समझदार, हमारी एक फैमिली फ्रेंड है, वो गुरुग्राम में रहती हैं मल्टी स्टोरीड में, तो एक दिन उनका फोन आया कि पंजाबी में कह रही थी कि माता जी ने भी सिलेंडर 3-4 मंगवा लिया। तो मैंने कहा, मैडम आपके यहाँ तो पाइप गैस है। फिर वो पंजाबी में कहते हैं, फिर भी मतलब अगर आपने सुना कि किसी चीज़ की शॉर्टेज होने वाली है तो माला होल्डिंग करनी शुरू कर, तो कुछ लोगों ने उस पर वो ट्रेडिंग शुरू कर दी। तो हम ये चाहते थे, देखिए एक सिलेंडर उज्ज्वला योजना में हमने देखा 10 करोड़, उसके 10 करोड़ 50 लाख लाभार्थी है। एक सिलेंडर, एक अगर 4 लोग हों एक परिवार में तो कितनी देर चलेगा? 3 महीने चलेगा। किसी परिवार में 4 सिलेंडर से ज्यादा नहीं है। अगर किसी की इंडेंट रिक्वायरमेंट 4 सिलेंडर हो, वो 4 के 16 सिलेंडर खरीदना शुरू करते तो आप क्या कंक्लूजन निकालेंगे? मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं, दिस विल एवरेज पर डे इंडेंट एलपीजी सिलेंडर की हमारी 52 लाख थी, 52 लाख। जब यह अफवाहें फैलाए, एक दिन में 90 लाख चली गई,
1: डबल
0: हो गया। तब हमने कहा कि भैया गलती कर रहे हो, जिस लोगों ने उन्होंने सिलेंडर लेके, क्योंकि अगर आपको 4 चाहिए पर आपको से उज्ज्वला में 9 अलाउड है, या जितने अलाउड है आपने जितने 9 चाहिए थे वो भी ले लिए, फिर हमने उसको कर दिया और हमने सारी बुकिंग ऑलमोस्ट 98% ऑनलाइन हो गई है उसकी, तो मतलब स्कोप है ही नहीं।
2: You must also note that the United States is intensifying economic pressure on Iran, while Tehran is warning that any further escalation could widen the battlefield. This as oil prices have risen for the first time in 6 sessions, as traders monitor potential discussions between the US and Iran at the United Nations General Assembly following a recent increase in shipments through the Strait of Hormuz. But the crucial part, the US Treasury Secretary Scott Bessent has warned that Iranian airlines could effectively be shut out of international operations from Wednesday, as in tomorrow, the 23rd of September. He says airports, fuel suppliers, ticketing companies that continue servicing Iranian carriers could risk being cut off from the US dollar system. This warning is of course significant, although its implementation and impact remain to be seen, with Iran Air announcing that some flights to Najaf in Iraq would continue. At the same time, Iran's Revolutionary Guard, the IRGC, has warned that it would change the geography of the war if Washington escalates this conflict. The IRGC in its latest statement has said it's prepared for a prolonged conflict and could change its weapons, change its military tactics and targets if the US escalates further. And their spokesperson Hussein Mohebi has said that the war is not over, and he added that the IRGC had prepared for a long-term war. Listen in to his full remarks.
3: امام شهید ما فرمود که جنگ رو منطقه‌ای خواهیم کرد و الان جنگ منطقه‌ای شده، ولی چون وسعت منطقه زیاده هنوز جا داره برای توسعه این جنگ به لحاظ جغرافیایی. ما قطعا جغرافیای جنگ رو تغییر خواهیم داد، تغییر در سلاح‌هایی که و تجهیزات جنگی که به کار خواهیم برد، و جنگ هم تموم نشده، جنگ ادامه داره و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم خودش رو برای یک جنگ طولانی مدت آماده کرده و از قبل هم آماده بوده و الان آماده تر شده برای یک جنگ طولانی مدت.
2: Meanwhile, the US President Donald Trump is yet again taking a jab at Russia after Kyiv rained barrages of drones at Moscow's crucial oil hub. Those strikes have choked the Russian oil industry, which is already under strain amid this ongoing war. The big question is, how badly is Russia's oil sector affected? And what could happen next as Europe sounds alarm over Russian aggression? Take a look at all the finer developments.
4: The Russia-Ukraine battle lines are heating up once again. And Donald Trump is having the last laugh with his subtle jab on Truth Social, where he claims that Russia has lost control of its crucial oil industry. This comes after Moscow

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
5: वाओ मामा क्या स्वाद है।
6: अरे मेरे राजा।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
5: वाओ मामा क्या स्वाद है।
6: अरे मेरे राजा।

0: And this molestation horror has triggered a political storm as well. The opposition is questioning the government over the safety of women and of policing. But the response of the government has added fuel to the battle. We're talking about JDU State Chief Umesh Kushwaha, who has called such incidents sporadic. Shravan Kumar, this is also the minister from Bihar, who has gone ahead and said that isolated crimes cannot be completely eradicated. The opposition has hit hard. Tejaswi Yadav is accusing the government of Bihar of Gundaraj, saying that women are not safe in the state. Rahul Gandhi is also hitting out at Bihar's governance and in fact criticizing what he describes as normalization of mob vigilantism and also harassment. The BJP and the JDU have also defended the administration, pointing to arrests and action against those who are involved.
1: ऐसे ही लोग को इनकाउंटर होना चाहिए जो समाज को तोड़ना चाहता है, समाज के बेटी बहुओं की इज्जत लूटना चाहता है, वैसे ही लोग को इनकाउंटर होना चाहिए। तो ये तो जब कानून का डर खत्म हो जाएगा तो लोग ऐसे ही करेगा। इसलिए कानून का राज खत्म हो गया है और ऐसे लोग का राज चल रहा है जो भ्रष्ट लोग हैं, जो अपराधी हैं। अपराधी पर जब तक लगाम नहीं लगेगा और ऐसे लोग को इनकाउंटर नहीं किया जाएगा तो ऐसे ही होता रहेगा।
2: घटना का मामला पुलिस के संज्ञान में आया, पुलिस ने ही एफआईआर दर्ज किया, तुरंत तीन गिरफ्तारियां भी हुई। मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तारी के लिए लगातार पुलिस ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है, एसआईटी का गठन किया गया है। लेकिन सभी समाज में ऐसी घटनाएं किसी हालत में भी स्वीकारता नहीं है और ये मानसिक रूप से विक्षिप्त लोग ही ऐसा कर सकते हैं। इसलिए इसके जितने भी निंदा की जाए कम है, लेकिन प्रशासन तुरंत, जैसे ही पता चला, पुलिस तुरंत सक्रिय हुई पता चलते ही, और तीन व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया। तीन अभियुक्तों को, जो मुख्य अभियुक्त है, वो भी जल्दी गिरफ्तार हो जाएंगे।
3: अच्छा, एक बात बताइए, वो लोग कौन है और लोगों के भीतर कानून का, संविधान का, सरकार का, सिस्टम का डर क्यों नहीं है? समाज का डर क्यों नहीं है? ये डर खत्म कैसे हुआ? तुम होते कौन हो पूछने वाले कि तुम्हारे माँ बाप को खबर है कि नहीं? और उसके बाद तुम 25 मिनट तक उस बच्ची के साथ, बच्चों के साथ बदतमीजी किए हो, तुम बच्चों को मारपीट किए हो, और एक लोग नहीं, कई लोग, समाज का कितना नैतिक पतन हो गया है। तो गाली सिर्फ सरकार को देने से क्या फायदा? सरकार तो है ही नहीं, डबल इंजन की सरकार और बीजेपी की सरकार।
4: बाहर में डांस करने वाली, फिर आप कहोगे कि किसी दूसरे प्रकार की बात, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, इस प्रकार की बात आप करोगे तो नीचे तक संदेश क्या जाएगा? ये मानसिकता से जो लोग ग्रसित हो रहे हैं, कानून व्यवस्था की बात तो अपने जगह की हुई, वो कानून व्यवस्था के टूटने की स्थिति क्यों बन रही है? कि जो हमारे टॉप लीडर्स माने जाते हैं देश के, जिनको दिशा हमको दिखानी चाहिए, उनकी सोच तो ये है महिलाओं के प्रति, ऐसे दिखेगा ना? आप किसी महिला के लिए अगर सार्वजनिक मंच से इस प्रकार की बातें करोगे तो उसका संदेश क्या जाएगा? अरे ठीक है, चलता है ये, क्या महिला, महिला को आपने आदर उनका एकदम से गिरा दिया। तो ऐसी घटनाएं घटित हो जाएंगी फिर।
0: Let's get you more political reactions coming about, and we have the LJP MP Shambhavi Chaudhary speaking to NDTV's Shivarur about the incident. Where was the police? Can law enforcement wait for public outrage basically to react? And what does this case say about the safety and freedom of young women in the state of Bihar? Listen in.
5: Shambhavi, I know you've seen this story, and this is a truly terrifying video that has gone viral. A class 10 girl and her friend being assaulted in full public view as a woman, as a young MP. This happened in your state. Your government is in power. What should the young people of Bihar think, according to you, Shambhavi?
6: First of all, I think this incident is disgusting. And as a woman, when I saw the videos, I was ashamed, I was terrified, and at the same time, I felt

0: responsible for whatever was happening to the girl. I don't think there is any justification for this incident, but the government is with the girl and the girl's family, and we are trying our level best to bring justice to her. There are three, you can say that there are three people who were involved have already been arrested, and there is a special task force has been a special task force has been brought into action. They are going to investigate this properly, independently, and nobody will be spared of their actions.
1: But Shambhavi, you know, where was the police? People are wondering. Some people are, you know, trying to pass this off as moral policing. But this is child sexual abuse. You've seen how this girl was practically, she was groped. She possibly could have been raped as well. Somebody was even filming it. This was plain criminality. People are trying to pass it off as moral policing.
0: No, definitely. I think there is no fear, and it looks like, you know, it looks like they had already planned to do all of this because their face were covered, and it's not like they didn't fear the law, because if they didn't fear the law, they would have been openly doing it, but they had covered their faces, and they were drastically in a conversation with the boy and the girl. So definitely it doesn't look like it abruptly happened. It looked like it was planned. But see, I am not the one who's investigating it, and I am not the one who's justifying it. As a member of the parliament, as somebody who is responsible from the government side, all I can say is that we are with the girl's family, and we are not going to spare anybody who is involved in such an incident. It is also important that we ensure collective responsibility of the society with the government. It is important to, you know, talk to the members of the society so that nothing like this also happens. It's important we instill core values, we instill morals in the society, that, you know, it's our collective responsibility to ensure a woman's safety.
2: Let's just also now get you the very latest, and this is in regard to NDTV exclusively speaking to Haryana's Chief Minister, Nayab Singh Saini. He has launched a sharp attack on the opposition. While speaking on governance, the Punjab politics and the Gurgaon waterlogging issue in an exclusive interview, he's also spoken about Gen Z, and let's listen in to what is really being said by the leader.
3: जो आप धुआंधार रैलियां कर रहे हैं पंजाब में और पग पहन कर कर रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी और खुद पंजाब के मुख्यमंत्री कह देते हैं कि चुनाव है इसलिए पग पहन लिया है, और असली नकली का सवाल कर देते हैं।
4: देखिए मनलोक्य जी, मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ। पंजाब के मुख्यमंत्री क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे, उसके अंदर मैं नहीं जाना चाहता। मैं उसको पर चर्चा भी नहीं करना चाहता, क्योंकि गुरुओं की दी हुई सम्मान है, गुरुओं का आशीर्वाद है। और ये मनोज्ञ जी आज से नहीं, लंबे समय से परिवार के अंदर हम समय समय के ऊपर जब कोई भी इस प्रकार का फंक्शन होता है, तो उसके अंदर मैंने बराबर दस्तार को सजाया है। अभी भी मेरे ख्याल से ये वीर बाल दिवस का एक बड़ा कार्यक्रम कुरुक्षेत्र छठी पातशाही पवित्र स्थल के ऊपर, जहां गुरुओं के चरण कमल पड़े, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, उन्होंने मेरा नहीं, पंजाब के लोगों का अपमान किया है। उन सब लोगों का अपमान किया है जिहड़े देश दुनिया के विच रह रहे ने, उन्हां दा अपमान किया जिहड़े सुबह शामी गुरु घर विच जा करके शीस नवाउंदे ने, उन्हां दा अपमान ये भगवंत मान ने किया है। क्योंकि मैं ये मानता हूँ, भगवंत मान को नहीं पता लगता है मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या नहीं बोल रहा हूँ, उसको नहीं पता चलता।
3: ऐसा क्यों?
4: वो केजरीवाल को मालूम होगा, वो प्रोपगंडा देश के सामने भी, पंजाब के सामने भी, और पूरी दुनिया च बैठे पंजाबी भाई उन्हें सब के सामने वो इसका प्रोपगंडा सामने आया।
3: आपको लगता है कि केजरीवाल ही सरकार चला रहे हैं, क्योंकि वो दिखते भी हैं, वो वहाँ पर अरविंद केजरीवाल पूर्व मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के?
4: बिना केजरीवाल के तो पत्ता भी नहीं पंजाब में हिलता, पत्ता भी नहीं हिलता। ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है कि मान साहब ने अगर ये गल कही है कि पगड़ी नकली है। मैंने कहा सी पिछले दिनों, मैंने कहा सी मान साहब नू माफ़ी मांगनी चाहिए, उस थां ते जाके माफ़ी मांगनी चाहिए है जिथे गुरुआं ने बख्शीश दिती है सानू, जिन्होंने ये सम्मान साढ़े सिर ते रखे, ये साड़ा अभिमान है, ये साड़ा स्वाभिमान है। परंतु मान साहब नू शायद नहीं पता चलता पंजाब दे विच उन्हां दा जन्म होया है। मैनू ऐसा लगता है कि उन्होंने पंजाब दे कल्चर नू समझा नहीं है भी पंजाब दा कल्चर की है। मैं पिछले दिनों वेख्या उन्हां दी कई वीडियो आंदी है, सारी झूठी बोल रहे, अरे कुछ तो सच्ची बोलो। मैं नशे की एक वीडियो उन्हां दी वायरल हुई सोशल मीडिया ते, और उद्दे विच कह रहे कि साड़ी सरकार ने 76 लाख लोग जड़े नशे का कारोबार करते, 76 बोलिया पता नहीं 72 बोलिया, इन्ने इतने लख लोग जेल के भी सुटते। कहा उन्होंने इन्ना नहीं पता कि जेलों में रखने का समान किन्ना है, किन्ने लोग आ सकते हैं।
2: Manogya, thank you for getting us that a special interview. Moving on now to a beautiful rescue that's been unfolded in West Bengal's Jalpaiguri. This is where an elephant calf was swept away by the strong currents of the Teesta River. While fishing, a group of fishermen spotted the frightened calf struggling in the water, and without hesitation, they took their boat nearly 3 kilometers through that strong current to reach it. The fishermen managed to pull the calf to safety and handed it over to the forest department, and they then in turn managed to locate the mother, and in a heartwarming ending, their efforts paid off. The calf was reunited with its family. Ah!

0: Hello, good afternoon, and welcome to Breaking Ground on NDTV. I am Ankit Tyagi. Ladies and gentlemen, an action-packed lineup for you. All the top stories from across the country. Let's begin with the headlines. Chief Minister Joseph Vijay launches breakfast scheme. Tamil Nadu expands free breakfast scheme for classes 6 to 8. 15.3 lakh more students to benefit from the scheme. Vijay government mounts attack on Stalin over Biramani Pokso case. Ask why no action against him under the Stalin government. Probe widens in IIT Bombay suicide case. Crime branch seizes exam CCTVs. Sahil allegedly caught cheating on CCTV. Captures classroom exit sequence. Rape horror numbs NCR. Three rape cases in Delhi in just 1 week. Rape cases trigger massive outrage. Questions over the law and order situation. Controversy over Hanuman statue in Texas. 90-foot Hanuman statue at center of political controversy. YouTuber calls for removal of Hanuman statue. Hindu groups slam call to tear down the statue. Right, some breaking news coming in. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath, of course, it's the election season and has begun his attacks on the Samajwadi Party over the Sanatan remarks. Chief Minister has once again invoked these remarks and have said that Ram devotees will answer Babar followers. Expected lines we have heard, in fact, in many elections in Uttar Pradesh. Yogi Adityanath has also said Samajwadi Party gets annoyed with Ram and they like Babar. Let's listen in.
1: Ek samay tha jab Samajwadi Party ki sarkar Baba sahab ke naam par bane hue medical college ka namkaran hata deti hai. Ek samay tha jab Sadguru Ravidas ji Maharaj ki pavan janmbhoomi Chhir Govardhan mein hone wale aayojan ko समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं होने देती थी. राम से तो इनको सनातन बैर है. भगवान राम का नाम लेते ही इनको उतनी ही चिढ़ होती थी जितना कि बाबर को. और इसलिए आपको तय करना है बाबर के अनुयायियों का जवाब केवल बजरंग की बजरंगी ही दे सकता है. बजरंग
2: इसका मतलब किसी ने सही कहा था कि जब भी उत्तर प्रदेश में बाबर हुमायूं बजरंगबली औरंगजेब इन सब की बात होने लगे तो आप समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश का इलेक्शन पास में ही है. जरा कैलेंडर में चेक कीजिए कि तिथियां कब हैं. जिस पार्टी को रोजगार के लिए चुना गया, जिस पार्टी को महंगाई के लिए चुना गया, जिस पार्टी को छात्रों को भविष्य के लिए चुना गया, जिस पार्टी को उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश प्रदेश बनाने के लिए चुना गया, अगर वहां का मुख्यमंत्री बाबर और बजरंग बली की बात कर रहा है तो आप समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी कितनी मुसीबत में खड़ी है कि अब कुछ भी नहीं रह गया है. विकास की बात ना करो और बाबर और बजरंग बली की बात करके चुनाव को डाइवर्ट कर दो.
3: देखिए मुझे लगता है माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जी को उनके जो लोग हैं स्टाफ के और बीजेपी के लोग उनको जानकारी नहीं देते हैं सही. मुझे लगता है ऐसा. मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि वो अपने लोगों से जानकारी इस बात की ले लें कि बाबर के रिश्तेदार बाबर के अनुयायी आजकल कहाँ हैं. तो मुख्यमंत्री जी को मालूम पड़ जाएगा कि बाबर के जो रिश्तेदार थे मान सिंह जी जय सिंह जी उनके वंशज बीजेपी में हैं और राजस्थान में डिप्टी सीएम हैं और हिंदुस्तान की किसी भी पार्टी में जो सेकुलर दल है उसमें बाबर का कोई भी वंशज मौजूद नहीं है. बीजेपी में अगर जाके चेक करेंगे तो आपको बाबर के वंशज मिल जाएंगे.
0: अजय दुबे माय कॉलीग इज नाउ जॉइनिंग मी विद मोर डिटेल्स ऑन दिस स्टोरी. पॉलिटिक्स हीटिंग अप देयर अजय, बट द फैक्ट रिमेन्स दैट यू नो कम इलेक्शन एंड वंस अगेन द डिस्कोर्स इज अबाउट बाबर एंड बजरंगबली. दिस इज अ वेरी कैलकुलेटेड मूव.

0: क्या उन्होंने फोर्जरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स करने का प्रयास, क्योंकि उस वक्त 1980 से 83 तक कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, ऐसा क्या किया? क्या ये जब मामला कोर्ट के अंदर गया तो कल ही दिल्ली के सेशंस कोर्ट ने मैजिस्टीरियल कोर्ट को ये ऑर्डर दिया कि आप इस बात की जांच करिए कि क्या एक कॉग्निजिबल ऑफेंस कमिट हुआ है, अर्थात क्या कांग्रेस पार्टी गांधी वाड्रा परिवार ने फर्जी डॉक्यूमेंट के जरिए सोनिया गांधी, जो 1980 में भारत की नागरिक नहीं थी, उनको वोट डलवाया?
1: All right, moving on now. Probe widens in the IIT Bombay student Sahil Wakore's death. The crime branch has CCTV footage for investigation. The footage allegedly shows this entire sequence of events that took place inside the examination room, and of course the sequence in which Sahil was asked to leave the classroom. Meanwhile, the student body has softened the caste bias claim and has said that our position has never been one presuming guilt or prejudging the ongoing investigation. At IIT Bombay, the faculty forum has backed Professor Dwala, stating that he has not been suspended and continues to remain a member of the institute's faculty. Support is also coming from faculty members in IIT Madras and Delhi for Professor Dwala. Meanwhile, IIT Bombay has begun replacing ceiling fans in student hostels with wall-mounted fans, in the view of the incident that took place at IIT.
2: उस शाम को हमें सिर्फ कॉल आया प्रोफेसर का
3: जी,
2: अचानक से कॉल आया सर, रात 8 बजे की साहिल ने सुसाइड किया है, ऐसा करके कॉल आया। इतने दिन होने के बाद उस प्रोफेसर ने माफी मांगी। प्रोफेसर बता रहे कि साहिल ने कुछ गलती नहीं की, फिर भी साहिल के साथ ऐसा क्यों हो गया? सर मैं आप लोगों से गुजारिश करती हूँ कि मेरे साहिल को न्याय मिलना चाहिए। अगर उसकी कुछ गलती नहीं थी, फिर भी उसके साथ ऐसा क्यों हो गया? आज तक की ये पहली घटना नहीं है सर, और जो भी घटनाएं हुई है उस घटना के बारे में आज तक कोई इंक्वायरी नहीं बैठी गई, कुछ ही हुआ नहीं। लेकिन हमने जब ये बोला तो हम पर भी वो प्रेशर डाल रहे है।
4: साहिल ने माँ बाप को बोला था कि मम्मी यहाँ पे थोड़ा बच्चों पर अन्याय करते हैं, जातिवाद करते हैं। आज वो कॉलेज में अगर साहिल के आज भी फेवर में न्याय नहीं मिल रहा होगा तो आज भी साहिल पर अन्याय ही हो रहा। हमारा पूरा भरोसा है कि ये चौकसी सीबीआई करे।
5: Extremely pained and upset at the loss of young life of our institute. The whole problem, I think, is that before a proper investigation has been completed and before the facts of the matter are out, people have started taking sides and people have started assuming some things, and under the assumptions they are making statements, they are taking positions, which is not fair. I mean, investigation will immediately reveal the reality of the situation. Okay, so my only worry is that if this trial by media or trial by social media especially starts happening for everything, how are we able to operate?
6: कि विंगमेट थे आप लोग, दूसरे को जानते थे, एग्जाम में कॉपी किया गया, इसको लेकर आपको उसने क्या बताया?
7: उसने किसी से भी कुछ बात नहीं की, यही बात है, सब स्पेक्यूलेशन है। कॉपी करने के बाद जब उसको बाहर लेके गए उसके बाद उसने किसी से बात नहीं की, तो किसी को कुछ नहीं पता कि क्या हुआ है। आई डोंट थिंक, जितना मैंने फर्स्ट ईयर में उसे देखा, कि हमने से किसी में या उसके दोस्तों में से किसी ने उसके कास्ट पर कभी भी रिमार्क किया हो। IIT बॉम्बे में ऐसा कल्चर है ही नहीं कि कोई किसी के कास्ट पर रिमार्क करता है, क्योंकि हम सारे JEE स्टूडेंट, हमें आइडिया है कि ये सब नहीं करना होता है, हम इतने एजुकेटेड हैं। एंड मुझे नहीं पता ये एंगल कहाँ से आया। डी ने कि ये सस्पेंशन था हमारा फर्स्ट पॉइंट, उसका भी रेजिग्नेशन नहीं था, क्योंकि जब तक वो गिल्टी प्रूफ नहीं हो जाते हम उनका रेजिग्नेशन नहीं मांग रहे।
1: Right, let's move on now to some shocking story which is

0: do it. It's unfortunate that the people are making similar such amount of remarks.
1: Prabhakar, one more question before I let you go. What about the victim in this case, the girl and that young boy, both of them, those who were seen in this video being assaulted in this video? What about them? What about their, how are they, what kind of support is being extended to them, and has their families also spoken about this?
0: Yeah, the Bihar administration or the officials who are actually onto this case, particularly they have confirmed that they are in touch with those the families of especially the girls and also the boy who was accompanying that girl. But as both of them are minors, so we don't have that liberty to disclose their identity. We're not even trying to go near the family members, because that would indirectly actually disclose their identity. So they are refraining from talking to media, and we completely respect that their identity should not be revealed. So the police officials, the administration, they are in touch with the family members, and they are coordinating with them as far as the investigation in this particular case is concerned.
1: Right, let's, Prabhakar, stay on with me. Let's just tell our viewers once again, the big story coming in after the outrage over that absolutely heartbreaking, disturbing video that came in from Jammu, where two minors, a young girl and a boy, those who were on a ride, were accosted, assaulted, groped, traumatized and molested in this video, where the boy was being beaten up, the girl was being molested by a group of seven people. The police today has arrested all the people, seven accused. The main accused in this case, this man that you are seeing on your screens, who had a gamcha around his face, had his face covered, has been arrested after an encounter in which he was shot at in his leg, and at this moment as we speak has been taken to the hospital. Now, Nandan Yadav is said to be the kingpin as far as this group is concerned. Yesterday, when we were talking about this case, you heard, ladies and gentlemen, how my colleague Somu Anand was telling us that this is a spot which is popular. People come here. It's a picnic kind of a spot. And there was no police presence there, and not the first time an incident like this has taken place there. At this moment, the police says that they have arrested all the seven accused. Two of them are identified as minors. We are waiting for the details about the other accused as far as this case is concerned. Prabhakar, you must have spoken, because since yesterday this became a question mark over the law and order situation in Bihar. Questions were being asked that is this the end of Jungle Raj and the rule of law that the police, that the BJP and the NDA government had promised. What are you picking up at this moment after this encounter, in the political circles of the state?
0: See, as far as this particular case is concerned, the government is certainly on a back foot, and Chief Minister Samrat Chaudhary, he held a couple of meetings yesterday, and we are told that even today he is personally monitoring the case, because this particular case has come as a slap on the face of the government, and it has given opportunity to the opposition actually to corner the government on the law and order front. Any government which is there in the power would not want a case like this to happen, because that actually puts them in a spot, and that is exactly what has happened with the government. So we are told that the political leadership of this particular government, they have given full liberty to the police to act as stern as possible, to put all the accused in a speedy trial, and also right. The POSCO Act has been invoked. So we're hoping that very swift and very stern action will be taken against all the accused here.
1: Time-bound, of course, a time-bound action needs to be taken. An example needs to be made out of them, so that nobody else in Bihar dares to do something like this. Prabhakar, stay on with me. Somu Anand, our colleague, is also joining us. He is in Jammu, has been reporting from there, continuously on this story. Yesterday, he gave us an update from the very spot where this entire incident took place. Somu, जो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि पुलिस ने जो एक अक्यूज्ड है, जो गमछा पहने हुए, ये जो मुंह छुपाकर, ये जिसने ये घटना को अंजाम दिया, नंदन यादव, इसको एनकाउंटर में घायल करा है और अरेस्ट कर लिया है. क्या जानकारी अभी आ रही है और परिवार का क्या कोई रिएक्शन है इस पर?
2: देखिए जो हमारे पास जानकारी है, नंदन यादव को प्रतापपुर से पुलिस ने गिरफ्तार किया था और उसकी दबिश, उसके गिरफ्तारी के लिए दबिश लगातार पुलिस दे रही थी। गिरफ्तारी के बाद उसे उसी घटनास्थल पर मरवा पहाड़ पर जहां पर यह घटना हुई थी, जहां का वीडियो वायरल हुआ था, वहां पर लाया गया। तभी इसने भागने की कोशिश की और इस दौरान पुलिस ने उसके पांव में गोली मारी है। उसका इलाज अभी सदर अस्पताल में चल रहा है। हमारे पास ये जानकारी है कि एक और आरोपी हरिराम यादव को भी पुलिस ने अभी गिरफ्तार किया है। हालांकि आधिकारिक रूप से पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन जो सूत्र हमारे हैं वो ये बता रहे हैं कि दो आरोपियों की आज गिरफ्तारी हुई और ये दोनों मुख्य आरोपी हैं। खासतौर पे नंदन यादव मुख्य आरोपी है, जिसका कि जिक्र आपने भी किया है। अभी और दो तीन आरोपियों की पुलिस को तलाश है, लेकिन फिलहाल सबसे बड़ा अपडेट इस मामले में यही है कि जो मुख्य आरोपी नंदन यादव है, जो उस लड़की को लेकर के भागने की कोशिश करता हुआ उस वीडियो में दिख रहा है, जो झकझोड़ने वाला वीडियो है, उस मामले के मुख्य आरोपी का पुलिस ने इनकाउंटर किया है। उसके पांव में गोली लगी है और उसका इलाज फिलहाल चल रहा है। जी अंकित,
1: इतने सात लोग टोटल आइडेंटिफाई हुए थे, सात अभियुक्तों को आइडेंटिफाई किया गया था, उसमें से अभी तक कितने लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है, कितने माइनर हैं और बाकी लोगों की क्या शिनाख्त हो पाई है, आइडेंटिटी है, ये इसके बारे में कुछ पुलिस ने जानकारी दी है?
2: देखिए, तीन जो आरोपी हैं नाबालिग हैं, जिनको कल ही पुलिस ने हिरासत में लिया था। जो नंदन यादव है वो बालिग है बताया जा रहा है, और दूसरा आरोपी हरिराम भी बालिग है, और इन दोनों की गिरफ्तारी हुई है। हालांकि एक गिरफ्तारी की पुलिस ने पुष्टि की, नंदन यादव की, और हरिराम यादव के बारे में अभी तक पुलिस ने आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा है। दो अन्य आरोपी जो हैं उनकी भी तलाश जारी है, और पुलिस का ये कहना है कि जो पूछताछ हुई है उसके आधार पर कुछ और आरोपियों पर पुलिस की नज़र है, जिनसे पूछताछ पहले की जाएगी और उसके बाद अगर उनकी भूमिका इस मामले में पाई जाती है तो उनको गिरफ्तार किया जाएगा। ये हमारे पास जानकारी है, यानी कि करीब सात से आठ टोटल आरोपी जो है उस पूरे मामले में हैं। सभी आरोपियों की पहचान कर ली गई है, पुलिस ये दावा कर रही है, और उसी आधार पे उनके जो परिजन हैं उनके ठिकानों पर भी पुलिस पहुंची, और जहां भी संभावित ठिकाने ऐसे थे जहां पर ये लोग छिप सकते थे, उन सभी जगहों पर पुलिस पहुंची है। नंदन यादव के बारे में जो अपडेट्स मिल रही हैं स्थानीय लोगों से बातचीत के आधार पर, पुलिस को इसकी पुष्टि करना बाकी है कि वो कुछ जो अवैध बालू खनन का जो कारोबार है उसमें जो कुछ लोग शामिल हैं उनके लिए भी वो काम करता रहा है। हालांकि पुलिस ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं किया, स्थानीय लोग इस बात का दावा जरूर कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये असामाजिक तत्व हैं। इनमें कई सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने पहले भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया है। ये तमाम जो दावे हैं वो स्थानीय लोगों की तरफ से हमसे बातचीत करने में, NDTV से बातचीत करने में उन्होंने किए हैं। तो ये जरूर एक सवाल है कि इसके बावजूद वहां पर पुलिस की गश्त क्यों नहीं थी। पुलिस अब जितना एक्टिव हुई है उतना एक्टिव अगर पहले रहती तो शायद ये वीडियो नहीं बनता, ये घटना ही नहीं होती और इस तरह की चीज़ें नहीं होती। तो ये कई सवाल है। हालांकि अब से थोड़ी देर के बाद हमें ये बताया गया है कि पुलिस आधिकारिक रूप से अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, जिसमें वो तमाम पक्ष जो है हमारे सामने रखेगी। जी,
1: जाने से पहले मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहता हूं, क्या जो लड़की के परिवार वाले हैं या लड़के के परिवार वाले हैं, जो दोनों बच्चे थे जिनके ऊपर ये पूरा वीडियो हुआ जिसपे इनमें हमला उनके ऊपर हुआ, उनकी तरफ से इस पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया या बयान आया है, और क्या आधिकारिक तौर पर कोई शिकायत उनकी तरफ से आई है?
2: देखिए, उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया है। परिजन काफ़ी सख्ते में हैं, परिजनों का ये कहना है, और क्योंकि वो हमसे ऑन रिकॉर्ड बातचीत नहीं कर रहे। हालांकि जो परिजन से जुड़े हुए कुछ और लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि उन्हें भी इस बात की जानकारी वीडियो वायरल होने के बाद मिली। वो पहले बच्चों ने जाकर के उनको नहीं बताया, संभवतः वो इतने डरे हुए थे और उनको लगा कि घर में भी अगर वो बताएंगे तो घर वाले भी उनसे ही नाराज़ होंगे, उन पर गुस्सा करेंगे, इसलिए उन्होंने ये बात नहीं बताई थी। जब वीडियो वायरल हुआ है उसके बाद उनको इस बात की जानकारी मिली है। उन्होंने पुलिस को जरूर अपना बयान दर्ज कराया है, क्योंकि जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ पुलिस ने FIR दर्ज की, और उसके बाद एक महिला SI ने जाकर के जो पीड़िता लड़की है उससे बातचीत की थी, और उसी आधार पे पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। लेकिन दोनों ही परिवार जो हैं वो पुलिस में जरूर बातचीत कर रहे हैं पुलिस के अधिकारियों से, लेकिन इसके अलावा कहीं भी वो बयान नहीं दे रहे हैं। जी
1: सोमू आनंद, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस विद ऑल दोस डिटेल्स। सोमू इज यू नो NDTV's मैन ऑन द ग्राउंड हु इज गेटिंग अस द लेटेस्ट डिटेल्स। एज सून एज द पुलिस इन फैक्ट गिव्स एन ऑफिशियल स्टेटमेंट वी विल ऑल्सो गो अक्रॉस बैक टू हिम। प्रभाकर माई कॉलीग कंटिन्यूज टू बी विद अस फ्रॉम पटना। प्रभाकर, यू नो दिस ऑल्सो यू नो अपार्ट फ्रॉम वॉट सोमू वॉज टेलिंग अस ऑन दिस केस, this also raises an important question for all parents, those who are watching at this moment. You know, don't give your kids the kind of confidence that if they are in trouble they can come back to you. They should not be scared in coming back and telling you if something happens to them. Prabhakar, all right, let's very quickly listen in to the Deputy Chief Minister of Bihar who is speaking at this moment.
3: Jo घटना करने वाले हैं, जो वीडियो बनाने वाले हैं, जो उसको वायरल करने वाले हैं, सभी

0: की पहचान की जा रही है, सभी प्रावधानों के तहत कठोरतम सजा दी जाएगी।
1: लेकिन सर इस सवाल यह कह रहा है सर कि दो अपराधी के बारे में बोलते हैं पुलिस ने, और अपराधी को पकड़ने के चक्कर में पुलिस ने गोली मारा पैर में अपराधियों का,
0: पुलिस ने
1: पैर में गोली मारा अपराधियों का, उसने दो अपराधी के बारे में बात कर रही है।
0: नहीं वो तो अब आप लोग के यहाँ क्या चल रहा है उसको हम नहीं जानते। गोली मारने की बात जब होगी तो अगर अपराधी कुछ इस तरह का कृत्य करेगा तो गोली मारने की बात की सूचना नहीं है।
2: एमएलसी चुनाव की घोषणा हो गई है,
0: एमएलसी चुनाव की घोषणा हो गई है और यह घोषणा प्रत्याशित है या प्रत्याशित थी, होने ही वाली थी। आपको इस घोषणा के मद्देनजर हम इतना जरूर बता सकते हैं कि इस चुनाव में हमारा एनडीए बिल्कुल आपसी सहमति से और एकजुटता से चुनाव लड़ेगा और 8 सीटों पर विजय होगा। एक आदमी बोलिएगा, आप दोनों बात कर रहे हैं, आज ही तो अभी चुनाव की घोषणा हुई है, अभी कह रहे हैं कि उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं हुई है। आज तक चुनाव घोषणा से पहले उम्मीदवार के नाम की घोषणा हुई है क्या? आरजेडी अब कोई जिनको अपने उम्मीदवारों पर शक है कि कहीं पार्टी छोड़ के ना भाग जाए, वो लोग जल्दी कर देते हैं। हमारे यहाँ तो काफ़ी उम्मीदवार हैं और सब में क्षमता है और आपसी सहमति।
3: All right, let me bring back my colleague Prabhakar, who's with us on this story. Prabhakar, you know, the minister doesn't seem to be aware of the fact, you know, of this news that we are breaking at this moment. He said that he doesn't know whether any accused has been shot at or not. But, you know, just give our viewers some perspective, Prabhakar, as far as the law and order situation is concerned. When it comes to the safety of the women, this once again highlights that there is so much more that needs to be done.
4: Very, very, very, very true, Ankit. An incident like this actually it comes not only as a blot for the government, but also raises serious questions as far as the law and order is concerned, especially the women's safety in the state of Bihar is concerned. And this government actually has been making tall claims as far as the women's safety in Bihar is concerned. We saw Chief Minister Samrat Chaudhary actually from multiple public dioceses actually making claim that ladkiyan raat mein घूमती हैं और लालू राज के समय में नहीं घूमती थी। सो कंपेयरिंग द एनडीएज रूल विस द रूल ऑफ द आरजेडी हियर इन बिहार, but now incident like this, or for that matter a similar incident, whenever it happens, actually it not only raises question on the claims being made by the government, but also a serious question mark on the women's safety in the state of Bihar, and also why the goons like the Nandan Yadav or the people like him actually does not have the fear of the law of the police.
3: Right, the police, in fact, will be very soon addressing a press conference on this issue. This, Prabhakar, also, in a way, yesterday exposed the mindset of a lot of politicians in Bihar. We saw Umesh Kushwaha, the JDU state president, speaking about this in a trivial manner, chutput ghatna. So did another minister. We grilled him on our show as well. But the fact is, Prabhakar, at least, within the establishment also, within the NDA also, there were those who called this out, distanced themselves from this kind of, trivialization of this entire matter.
4: Yeah, and I very strongly believe, Ankit, that these politicians who are making these kind of statements actually needs a training of a sort, because this Kushwaha guy, he happens to be the state president of JDU. Shravan Kumar, the other minister who made a similar statement, happens to be a very senior ministerial colleague, very close to Nitish Kumar. And in an incident like this, if they call it a chutput ghatna or choti moti ghatna, it's something very surprising, very shocking. So probably they need to be more careful with the words they choose.

0: प्रयास कर रही है केवल चिन्हित लोगों तक ही केवल कार्रवाई एक राजनीतिक कारणों से करना चाहती है। अगर इस तरह का दो तरह का अगर न्याय होगा तो बिहार की स्थिति और खराब होगी।
1: घटना का मामला पुलिस के संज्ञान में आया, तुरंत पुलिस ने ही FIR दर्ज किया, तुरंत 3 गिरफ्तारियां भी हुई। मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तारी के लिए लगातार पुलिस ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है, SIT का गठन किया गया है। लेकिन सभी समाज में ऐसी घटनाएं किसी हालत में भी स्वीकारता नहीं है और ये मानसिक रूप से विक्षिप्त लोग ही ऐसा कर सकते हैं, इसलिए इसकी जितने भी निंदा की जाए कम है। लेकिन प्रशासन तुरंत, जैसे ही पता चला, पुलिस तुरंत सक्रिय हुई पता चलते ही, और 3 व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया, 3 अभियुक्तों को जो मुख्य अभियुक्त है वो भी जल्दी गिरफ्तार हो जाएंगे।
2: अच्छा एक बात बताइए, वो लोग कौन है और लोगों के भीतर कानून का, संविधान का, सरकार का, सिस्टम का डर क्यों नहीं है, समाज का डर क्यों नहीं है? ये डर खत्म कैसे हुआ? तुम होते कौन हो पूछने वाले कि तुम्हारे माँ बाप को खबर है कि नहीं? और उसके बाद तुम 25 मिनट तक उस बच्ची के साथ, बच्चों के साथ बदतमीजी किए हो, तुम बच्चों को मारपीट किए हो, और एक लोग नहीं कई लोग, समाज का कितना नैतिक पतन हो गया है। तो गाली सिर्फ सरकार को देने से क्या फायदा? सरकार तो है ही नहीं, डबल इंजन की सरकार और BJP की सरकार।
3: सरकार बर्खास्त होनी चाहिए सम्राट चौधरी की, वो गुंडों की सरकार है और सम्राट चौधरी को अमित शाह ने बनाया है। गुंडों के हाथ में सत्ता देना या अमित शाह जी का एक नशा है। राज्य में गुंडों की फौज खड़ी करना सत्ता में अमित शाह का एक बहुत बड़ा छंद है, हॉबी है, यही हो गया है ना। अब देखिए जाकर बिहार की परिस्थिति क्या है। लोग लालू यादव जी को आज भी बोलते हैं ना, उनके राज में गुंडा राज था, अभी तो महागुंडा राज चल रहा है।
4: बाहर में डांस करने वाली, फिर आप कहोगे कि किसी दूसरे प्रकार की बात, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, इस प्रकार की बात आप करोगे तो नीचे तक संदेश क्या जाएगा?
5: Alright, breaking news coming in at this moment. First goal for India in the Asian Games. This is the big story that we have been tracking here on NDTV. The first goal for India in the Asian Games. My colleague Preeti Daya is here. Preeti, over to you.
6: Well, that's the big story coming in from Aichi Nagoya Asian Games. India gets its first gold medal thanks to the efforts of the Indian women's cricket team. And this is, like you said, Ankit, the first gold medal for Indian contingent in these Asian Games. And India has, in fact, successfully defended their gold medal. Remember, in 2023 as well, the Indian team were the champions, the gold medalists in Hangzhou. And this time in Nagoya, the Indian team adding another gold to the list. Let's just quickly tell our viewers what exactly transpired in this final against Sri Lanka in the final, in the gold medal match today in Nagoya. India was taking on Sri Lanka and batting first. The girls posted 216 runs, which is the highest Asian Games total posted by a women's cricket team. And having set that target of 217 runs, when Sri Lanka came out to bat, they were folded out for 69 runs in 15.4 overs. So there you go, the efforts of Harmanpreet Kaur and her entire team coming to fruition there, getting the gold for India in the Asian Games. The first gold medal for the Indian contingent coming via defending champions, the women's cricket team. Batting first, in fact, the women's team posted a massive total of 216 runs thanks to a 48 by Shefali Verma. Smriti Mandana in splendid form, making 79 runs of just 45 balls. Once the two openers were out, we had Richa Ghosh going for 49 runs in just 22 balls. And this is how it all transpired. It was never a competition against Sri Lanka. Ankit, I mean, like I said, the defending champions were very much expected to get this gold, and yeah, we are only too happy that it has come back to us.
5: The women have led the way, have started the golden tally. We are hoping the men would be

0: भी हाईएस्ट विकेट टेकर थी एशिया कप में भी, और अभी देखा जाए तो इस एशियन गेम्स में भी दीप्ति हाईएस्ट विकेट टेकर है और 8 विकेट हैं दीप्ति के, और सेकेंड हाईएस्ट विकेट टेकर भी फिर श्री चन्नी है। और ये इंडिया टीम इस समय जैसा गेम खेल रही है, हाईएस्ट रन गेटर भी हमारे यहाँ से हैं, सेकेंड हाईएस्ट रन गेटर भी हमारे यहाँ से हैं, हाईएस्ट विकेट टेकर भी हमारे यहाँ से, सेकेंड हाईएस्ट विकेट टेकर भी इंडिया टीम से ही है। तो इस समय जो टीम एकजुट होकर खेल रही है और पूरी यूनिट के साथ उतर रहे हैं गेम के लिए मैदान में, तो मैं समझता हूँ ऐसे ही जीतते रहेंगे और ऐसे ही गोल्ड मेडल जीतते रहेंगे।
1: सुमित जी, हम सबके लिए गर्व का पल है और हमारी वुमेन्स क्रिकेट टीम ने सबसे पहला गोल्ड मेडल लाके दिया है भारतीय कंटिंजेंट को। हमारे पास अब तक सिल्वर आ चुके थे, ब्रॉन्ज आ गए थे, लेकिन गोल्ड मेडल मिसिंग था। मुझे बताया जा रहा है कि आपके फादर, दीप्ति जी के फादर भी साथ ही बैठे हैं आपके, अगर आप उन्हें भी बुलाएं एक बार, उनसे भी बात करना चाहेंगे, क्योंकि दीप्ति का खुद का कॉन्ट्रीब्यूशन भी बहुत ज़बरदस्त रहा है। जैसा कि आपने कहा, एशियन गेम्स में भी वो हाईएस्ट विकेट टेकर हैं, सेमीफाइनल में 3 विकेट लिए, आज फाइनल में 3 विकेट लिए, एक बार उनसे भी अगर आप बात करा दें और वो भी अगर अपना कोई मैसेज भेजना चाहें हमारी टीम को तो।
0: जी बिल्कुल,

0: सर आवाज़ आ रही है आपको मेरी?
1: आवाज आ रही है, हल्की हल्की आ रही है।
0: सुमित जी आप ही बोल दीजिए, अगर हम आपके पिताजी की प्रतिक्रिया लेना चाहें वो क्या कहेंगे आप एक बार उनको बता दीजिए।
1: बिल्कुल। वो पूछना चाहते हैं कि टीम की जीत पर और दीप्ति के प्रदर्शन पर आपका क्या कहना है?
2: टीम की जीत पर बेहद खुशी है बहुत ही, और दीप्ति ने भी अच्छा प्रदर्शन किया आज। उसने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए हैं और वो पूरे एशियन गेम्स और एशिया कप में हमारी बेटियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। बैट से भी अच्छा किया है, बॉलिंग से भी अच्छा किया है, और आगे आने वाले विश्व कप में भी हम इसी तरह से प्रदर्शन करेंगे और सारे विश्व कप इंडिया को ला के देंगे, और हमें बेहद खुशी है, बहुत प्रसन्नता है हमें
0: जी।
3: आपको एक सवाल और पूछना था। अब एशिया का लक्ष्य तो हमने पार कर ही लिया है, एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल भी हमने जीत लिया है, लेकिन ओलंपिक्स में पहली बार 2028 में भारतीय टीम जाएगी, तो उसको लेके आप कितना एक्साइटेड हैं और वहाँ पे आप कैसा प्रदर्शन देखना चाहेंगे?
1: बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी तक जैसा आप गेम देखते आ रहे हैं वनडे वर्ल्ड कप में, एशिया कप में, एशियन गेम्स में, अभी आगे चल के जैसा आपने कहा कि अभी हम ओलंपिक में भी 2028 में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, मैं उम्मीद करता हूँ जिस प्रकार से अभी टीम एक यूनिट के साथ उतर रही है गेम में और जिस तरह से हमारी ओवरऑल परफॉर्मेंस है, ऐसा नहीं है कि हर मैच में एक ही प्लेयर प्लेयर ऑफ द मैच बन रहा है। अगर आपकी टीम से हर मैच में प्लेयर ऑफ द मैच एक डिफरेंट प्लेयर बनता है तो इसका मतलब ये है कि आपकी पूरी टीम अच्छा कर रही है।
3: थोड़ा घर का माहौल के बारे में बताइए हमें, दीप्ति जब खेलती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो कैसा माहौल होता है, कैसी एक्साइटमेंट होती है वहाँ पे, और पूरी फैमिली, आसपास की नेबरहुड कैसे आप सेलिब्रेट करते हैं?
1: बिल्कुल, देखिए ये हमारे शहर के लिए, केवल उत्तर प्रदेश के लिए गौरव की बात नहीं है, पूरे देश के लिए गौरव की बात है। और जब भी दीप्ति का मैच होता है मैं आपको बताना चाहूँगा कि सभी लोग सुबह से अपने काम में फ्री हो जाते हैं, हमारे मम्मी जी, पापा जी, अड़ोसी पड़ोसी, और सभी लोग एकजुट होके मैच देखना पसंद करते हैं, पूरी फैमिली इकट्ठा होके उस दिन सारे काम से फ्री हो जाती है कि आज दीप्ति का मैच है, आज कोई काम नहीं रखेंगे। तो बहुत ही अलग लेवल पे मैं कहता हूँ कि उत्साह होता है हमारा, और पूरी कॉलोनी में एक खुशी का माहौल होता है कि दीप्ति का मैच है, इतने बड़े मंच पे वो परफॉर्म कर रही है, तो सब लोग देखना पसंद करते हैं।
0: सुमित, हमारी कोलीग रिका है नागोया में, वो मैच कवर कर रही हैं, और जब इससे पहले मैच से पहले जब हम प्रैक्टिस देखते हैं तो रिका ने हमें बताया था कि कैसे दीप्ति अब जो यंग टैलेंट है टीम का उन्हें भी बहुत सपोर्ट कर रही हैं, श्री चरणी को भी बहुत सपोर्ट करती हैं, गाइडेंस देती हैं लगातार, तो एक वो जो सीनियर की एक भूमिका होती है, अब ऐसा लग रहा है कि दीप्ति ने अपने कंधों पर वो जिम्मेदारी भी ले ली है। हरमनप्रीत कौर तो हमेशा जब मुसीबत में होती है दीप्ति के पास जाती ही हैं, लेकिन अब शायद और यंगस्टर्स को ग्रूम करने के लिए भी उनके पास जा रही हैं।
1: बिल्कुल, कहते हैं ना कि आप जो सीखते हैं वो अनुभव से सीखते हैं, एक्सपीरियंस जो आपके पास है वो कहीं ना कहीं आपके जो यंग प्लेयर्स हैं वो जो अभी टीम में नए नए आए हैं और आपके पास इतना अनुभव है, आप अभी समझिए 380 विकेट्स के साथ में लीड कर रहे हैं, हाईएस्ट विकेट टेकर हैं आप आईसीसी रैंकिंग में, तो उस चीज का जो एक्सपीरियंस है, जो अनुभव है, वो जरूर दीप्ति को सबसे साझा करना चाहिए, अपने यंगस्टर्स को और ग्रूम करना चाहिए, जैसा कि वो कर रही है, लगातार कर रही है, टीम के प्लेयर्स से बात करना और एज अ सीनियर अपनी जिम्मेदारी को समझना कि हम तो एक लंबे समय से परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि टीम का हर एक प्लेयर परफॉर्म करे, खासतौर से वो यंगस्टर्स जो बहुत उम्मीद करते हैं कि हमारे सीनियर्स हमको बहुत अच्छी गाइडेंस देंगे, तो उस पर दीप्ति खरा उतर रही है।
0: सुमित जी बहुत शुक्रिया एनडीटीवी से बात करने के लिए, और एक बार फिर से कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू, द इंटायर फैमिली, एंड ऑफ कोर्स ऑल ऑफ अस रिका, प्राउड मोमेंट, लाइक आई सेड द फर्स्ट गोल्ड मेडल इज हियर फॉर द इंडियन कंटिंजेंट, शॉर्टली वी विल बी हियरिंग द नेशनल एंथम एज वेल एज द गर्ल्स विल स्टेप ऑन टू द पोडियम टू रिसीव देयर गोल्ड मेडल्स। बट आई एम सॉरी आई हैड टू इंटरप्ट यू अर्लियर, यू वर टॉकिंग अबाउट द कॉम्प्रिहेंसिव परफॉर्मेंस दैट वी हैव सीन फ्रॉम द इंडियन टीम थ्रू आउट दिस टूर्नामेंट एंड ऑल्सो इन द सेम मंथ two back-to-back titles, the Asian Games and of course the Asia Cup before that, undisputed champions of the continent.
4: Absolutely, you know, and they have proven the kind of quality that they bring to table. It's not just about, you know, one performance. They have delivered win after win, and that's why, you know, there are so many fans also who have turned up at the Korogi Park here in the Nissin city, which is just outside of Nagoya. We didn't expect as many fans to turn up, and they are not just Indian fans, they're local Japanese. Of course, there are some Indian fans here as well. I believe that there are a lot more Indian fans who have gone to Sano City today to catch Indian men's team. But this moment is something that all the sports fans will remember, and the ones particularly around 500 of whom have turned up at the Korogi Cricket Park here.
0: Well, now that you reminded us about that one-off match between India and Japan, let me tell our viewers that India has managed to win that one as well, despite putting only 32 on board in the five overs that we got to play because of wet conditions on the outfield. And Japanese team was folded out for 30 runs. I mean, they could finish only that much in their five overs. So both the matches going in India's favor. And Gaurav, that match essentially is not going to have any impact on the outcome of these Asian Games and how the matches will transpire in the quarterfinal, semi-final stages here. But good start for the cricket team on both the counts. The women's team, of course, getting the gold medal. Men have also started with this friendly match going their way.
3: And Preeti, we wouldn't expect anything less. We are, of course, the powerhouses when it comes to world cricket. So anything less than victory at the Asian Games is going to be considered unsatisfactory. Coming to that men's match, a few hairy moments there, because essentially when you have a five-over match, it's a free hit. You know, free hit is something we're used to in T20 cricket, but this was a different context when I call it a free hit, because in five overs, anything is possible. The distance between the two teams in terms of quality, in terms of performance, sort of goes out of the window when it's only five overs. And we saw, given the amount of rain, the weather conditions over there, it wasn't easy even for the Indians. So from that standpoint, good to get a win under the belt, but obviously the real work is yet to come.
0: All right. On that note, thank you very much for the moment, Gaurav and Rika, for joining us with your inputs. Of course, India's medals tally at the Asian Games now stands at 7, with 1 gold, 4 silver and 2 bronze medals coming our way so far. There's plenty lined up. We're slipping into a short break, but keep watching NDTV for more news and updates.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा।

0: Padmaja Joshi interviewing the faculty member at the IIT Bombay, even as there's a nationwide questions being asked on this entire case. The probe widens in the IIT Bombay student Sahil Wakode's death, and the crime branch has seized the CCTV footage for investigation. The footage shows Sahil allegedly cheating during an examination. The CCTV footage also captures the sequence in which Sahil was allegedly asked to leave the classroom. Meanwhile, the student body has softened the caste bias claim and said that the bias claim and said that our position has never been one of presuming guilt or prejudging the ongoing investigation. And IIT Bombay, the faculty forum, has backed Professor Dulia and stating that he has not been suspended and continues to remain a member of the institute's faculty. Support is also coming from faculty members at the IIT Madras and IIT Delhi for Professor Dulia. Meanwhile, IIT Bombay has begun replacing ceiling fans in the student hostel rooms with wall-mounted fans as a result of this latest case.
1: उस शाम को हमें सिर्फ कॉल आया प्रोफेसर का
2: जी
1: अचानक से कॉल आया सर रात 8 बजे की साहिल ने सुसाइड किया है ऐसा करके कॉल आया इतने दिन होने के बाद उस प्रोफेसर ने माफी मांगी और प्रोफेसर बता रहे कि साहिल ने कुछ गलती नहीं की फिर भी साहिल के साथ ऐसा क्यों हो गया सर मैं आप लोगों से गुजारिश करती हूँ कि मेरे साहिल को न्याय मिलना चाहिए अगर उसकी कुछ गलती नहीं थी फिर भी उसके साथ ऐसा क्यों हो गया आज तक की ये पहली घटना नहीं है सर और जो भी घटनाएं हुई है इस घटना के बारे में आज तक कोई इंक्वायरी नहीं बैठी गई कुछ ही हुआ नहीं लेकिन हमने जब ये बोला तो हमें हम पर भी वो प्रेशर डाल रहे है
3: साहिल ने माँ बाप को बोला था कि मम्मी यहाँ पे थोड़ा बच्चों पर अन्याय करते हैं जातिवाद करते हैं आज वो कॉलेज में अगर साहिल के आज भी फेवर में न्याय नहीं मिल रहा होगा तो आज भी साहिल पर अन्याय ही हो रहा हमारा पूरा भरोसा है कि ये चौकसी सीबीआई करे
0: Now moving on to the latest in the Jamui horror. The accused Nandan Yadav in Jamui molestation horror case has been shot in an encounter. The accused is injured after he was shot during the clash with the Jamui police. Meanwhile, three other people who have been arrested so far in the case are being probed and investigated. This comes after a shocking case from Bihar's Jamui where a minor boy and girl were allegedly surrounded and harassed by a group of men. Visuals from the incident show the girl being confronted, grabbed and assaulted even as she pleaded with folded hands and urged the men to let her go. A masked man is seen grabbing the girl and dragging her away in this shocking video.
4: जमुई की घटना के मुख्य आरोपी नंदन यादव को पुलिस ने पांव में गोली मारी उसका इनकाउंटर किया क्योंकि जब पुलिस उसे पकड़ने आई उसने भागने की कोशिश की देखिए हम आपको वो स्पॉट दिखा रहे हैं ये वो पूरा इलाका प्रतापपुर का नदी घाटी का इलाका है जहां पर ये आरोपी छिपा हुआ था और पुलिस लगातार दबिश दे रही थी और पुलिस को जब इनपुट मिले उसके बाद पुलिस इस तरफ आई और यहीं पर यहां से करीब 1 किलोमीटर दूर उस आरोपी का घर है मेरे दाहिनी तरफ और बाईं तरफ आपको ये नदी दिखाई दे रही है और सामने की ओर वो पहाड़ है मड़वा पहाड़ जहाँ पर उसने इस वारदात को अंजाम दिया था वो इस जगह से करीब 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर है तो ये पूरा स्पॉट है और इसी तरफ पुलिस जो है वो गई थी उसको पकड़ने के लिए और तभी उसने भागने की कोशिश की और उसके बाद पुलिस ने उसके पांव में गोली मारी क्योंकि जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ था उसके बाद से बिहार की कानून व्यवस्था पर महिला सुरक्षा को लेकर के तमाम तरीके के सवाल उठ रहे थे और इसके बाद जब इन आरोपियों को इसमें से पहले 3 नाबालिग पुलिस ने हिरासत में लिए उनसे पूछताछ की और फिर पुलिस को ये इनपुट मिला कि जो मुख्य आरोपी जिसने अपने फेस को कवर कर रखा था गमछा बांध रखा था अपने मुंह पर वो इस तरफ ये जो सामने घाटी का इलाका आपको दिखाई दे रहा है और यहाँ नदी है इस इलाके में वो छिपा हुआ था और यहाँ से करीब 1 किलोमीटर दूर ही उसका गांव है जहाँ पर वो ट्रैक्टर चलाता है ट्रैक्टर उसने रख रखा है और वही उसकी आजीविका का साधन भी है। और उसके अलावा लोग यह बता रहे हैं कि कुछ असामाजिक तत्वों के साथ भी उसकी संगत थी। बहरहाल ये इसी इलाके में छिपा हुआ था और यहाँ से पुलिस की गाड़ियाँ सामने की ओर से आई और जब उसको तलाशने के लिए गई वो भागने की कोशिश कर रहा था, इस दौरान पुलिस ने उसके पाँव में गोली मारी।
0: We will be tracking that Jamui case very, very closely here on NDTV, but it's time to head for a short break. When we return, more updates from across the country.

0: recently in the month of Sawan, you went all the way to Haridwar with that Kavad. Kya ye cultural nationalism hai, tech pe dhyan de? क्या है क्या आपकी मैसेजिंग, कावड़ या कंप्यूटर?
1: क्या टेक्नोलॉजी एंड ट्रेडिशन साथ में नहीं जा सकते क्या? डज बीइंग प्रोग्रेसिव और बीइंग टेक सेवी, डज इट मीन वी अप्रूट आवरसेल्व्स फ्रॉम आवर कल्चर?
0: सो सोमनाथ एंड स्टार्टअप्स कैन बोथ कोएग्जिस्ट,
1: दैट इज व्हाट मेक्स इंडिया सो स्पेशल. इफ वी होल्ड ऑन टू वन एंड लीव द अदर, देन पद्मजा, इंडिया विल स्टॉप टू बी भारत.
0: Before you did the Kavad Yatra, you also did the Iron Man.
2: Tere junu ke aage ambar panahe mange.
1: Essentially includes 1.9 kilometers of swimming in the ocean, 90 kilometers of cycling, 21.1 kilometer run. So you got to finish all of this in 8 hours 30 minutes. That's the cutoff. This year, unfortunately, I was a little lazy and I couldn't train.
0: We are going to knock that laziness off. One, two,

0: Samajwadi Party and Congress out of elections in Uttar Pradesh. Congress goes on to say, however, if such a situation arises, we are prepared to fight on all 403 assembly seats. A war of words we are witnessing between Samajwadi Party and Congress ahead of elections in Uttar Pradesh. Earlier, we of course heard Nitin Nabin saying that BJP will win the elections. But right now, a war of words between both the parties. Congress saying ready to fight alone if required. Take a listen.
1: मुझे लगता है कि अगर उत्तर प्रदेश में कोई व्यक्ति ऐसा है जो भाजपा को हरा सकता है तो वो सिर्फ अखिलेश यादव जी है। कांग्रेस अपने दम पर कुछ कर नहीं पाएगी। गठबंधन रहा तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं रहा तो ये उनके लिए नुकसान है, हमारे लिए नहीं।
2: अखिलेश जी बोल दें ये बात, राहुल जी ने तो शुरू से कहा है इंडिया गठबंधन को मजबूत करने की जिम्मेदारी हमारी है। हमने तो कभी नहीं कहा कि हम अकेले लड़ेंगे। आपको भी हम कितने बार इंटरव्यू दे चुके हैं, हम बार बार कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन को मजबूत करने की, ताकत देने की, और चूँकि बड़ा दल होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी है, तो हम तो सबको साथ लेकर चल ही रहे हैं। हमने तो एक बार भी नहीं कहा कि अकेले लड़ना है, लेकिन अगर कोई ऐसी परिस्थिति आती है अकेले लड़ना, तो तैयारी तो 403 सीट की हम कर चुके हैं, और इसलिए कर चुके हैं कि जब गठबंधन होगा तो जो हमारा घटक दल होगा, सपोज करो हमारा गठबंधन समाजवादी पार्टी से होता है, तो जहाँ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी होंगे, हमें उनको भी तो जिताने में मदद करनी है। वो तभी तो करेंगे जब हमारा वहाँ संगठन होगा। तो हम
0: We're slipping into a very short, quick break, but come right back. Coming up next, the NETV World exclusive. NETV's Adhir Rajkol speaks to former Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina. Come right back.

0: schemes and programs if we can't even ensure the safety of women on our streets? So it's really something that all of us need to think about. Wherever there are state governments, and especially central government, they need to think about how they are going to ensure that women feel safe.
1: जो जमुई में जो घटना हुई, जिस प्रकार से पूरे बिहार में जो बच्चियां जो हैं, जो महिलाएं जो हैं, जो युवती है, वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। आप सब लोगों ने उस वीडियो को देखा होगा, शर्मसार कर देने वाला वो वीडियो है। दोषियों को जितनी कड़ी से भी कड़ी सजा दी जाए वो कम है। आज बिहार में ये वीडियो साबित करता है कि कोई भी महिला बच्चियां सुरक्षित पूरे बिहार में नहीं है।
2: आज बिहार के जेलों में जाइए तो 70% एक समाज के लोग आते हैं, चाहे बलात्कार का मामला हो, भूमि हड़प का मामला हो, हत्या का मामला हो, इस सारे केसों में 70% लोग, जो रिकॉर्ड है, सरकारी रिकॉर्ड है, एक ही कह सकते हैं कि राजनीतिक दल के लोग होते हैं। आज हमारे दिमाग में बात बनती थी कि कहीं न कहीं उन्हीं लोगों का तो हाथ नहीं था, लेकिन जब इनकाउंटर हुआ, 7 आरोपी गिरफ्तार किए और एक नंदन यादव जी का इनकाउंटर हुआ, तो हमारी वो पूर्व धारणा जो थी वो मूर्त रूप लिया।
3: We're slipping into a very short break, but come right back. We're tracking all the stories that matter here on NDTV.

0: लिए श्री राजकुमार पेरियसामी को प्रदान किया जा रहा है।
1: Congratulations, Major Mukund.
2: Army.
3: Army. Mero job illa. It's my life.
4: The film is awarded for masterfully directing a deeply moving biographical war drama that balances intense action with profound human emotion. The film pays heartfelt tribute to courage, sacrifice of a real-life soldier and his family. Moving on to the next award, Best Children's Film is awarded to the Telugu film 35 Chinna Kathakadu, produced by S Originals and Voltaire Productions Private Limited. Sri Srijan Yarabolu receives the Golden Lotus. A heartwarming film that celebrates the transformative power of education, curiosity, and parental support.
0: और इसी फिल्म के निर्देशक श्री नंद किशोर ई मणि को भी स्वर्ण कमल प्रदान किया जा रहा है। आप प्राप्त कर रहे हैं सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार। ये दिल को छू लेने वाली फिल्म है जो शिक्षा, जिज्ञासा और माता पिता के सहयोग की ताकत को खूबसूरती से सामने लाती है। जोरदार तालियां स्वर्ण कमल पुरस्कार के लिए। राष्ट्रीय सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों का संवर्धन करने वाली सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार कैप्टन मिलर को मिल रहा है, जो प्रोड्यूसर सत्य ज्योति फिल्म की तरफ से श्री त्यागराजन टी जी स्वीकार कर रहे हैं।

0: The film is recognized for its rugged visuals, mythic framing, and unflinching politics that elevates a rebellion saga into a genuinely rousing original Tamil cinema.
1: और इसी फिल्म के डायरेक्टर श्री अरुण माथेश्वरन को भी रजत कमल का सम्मान बेस्ट फीचर फिल्म प्रमोटिंग नेशनल सोशल एंड एनवायरमेंटल वैल्यूज की कैटेगरी में पुरस्कृत ये फिल्म धनुष के प्रभावशाली अभिनय जीवी प्रकाश के शानदार संगीत और औपनिवेशिक शासन के खिलाफ साहसिक कहानी के माध्यम से तमिल सिनेमा में मजबूत पहचान बनाती है
0: An award for the best popular film providing wholesome entertainment goes to Telugu film Kalki 2898 AD Shri Chalasani Ashni Datta on behalf of Vijayanti Movies receiving the Golden Lotus. The film is recognized for creating groundbreaking visual spectacle that seamlessly blends a highly entertaining narrative and expansive world building with mythological imagination. The exceptional visual effects set new benchmarks in Indian cinema.
1: He is receiving the Golden Lotus. Aur film ke nirdeshak Shri Nag Ashwin Singhi Reddy ko bhi Swayan Kamal ka samman. Telugu film Kalki 2898 AD mein adbhut drishyatmak rachna ke saath manoranjak kahani aur samriddh pauranik kalpana ka shandar mel dekhne ko milta hai. Apne asadharan drishya prabhav se ye film Bharatiya cinema mein naya manak sthapit karti hai.
0: Distinguished Guest Award for the Best Debut Film of a Director being conferred to Shri Randeep Hooda for the film Swatantrai Veer Savarkar. He receives the Golden Lotus.
2: अब बातों और मीटिंगों का समय समाप्त.
1: गोल्डन लोटस अपने नाम करने वाले इस फिल्म में स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर के जीवन के शुरुआती दिन भारत की आजादी की लड़ाई पर उनके प्रभाव और योगदान को दिखाने में निर्देशक की कला के प्रति उत्कृष्ट प्रतिबद्धता और महारत की झलक मिलती है और अब सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार हिंदी फिल्म आर्टिकल 370 के नाम फिल्म निर्माता जियो स्टूडियोज एंड B62 स्टूडियोज की तरफ से श्री आदित्य धर प्राप्त कर रहे हैं स्वर्ण कमल
3: रूम में बैठे हम लोगों और पीएमओ के कुछ कोर मेंबर्स के अलावा प्राइम मिनिस्टर सर के पीए तक को नहीं पता होना चाहिए कि हमारा प्लान क्या है
0: The film centers on the mission to fully integrate Jammu and Kashmir into the Indian Union, emphasizing a unified and indivisible nation, highlights the battle against local corruption and dismantling conflict economy that had historically

0: destabilize the region.
1: Shifting our focus away from the national wars, which is currently underway in Gujarat, to another case of Veeramani Pokso case, which is currently widening with investigators now examining not just the allegations against the accused, but also the circumstances surrounding the earlier investigation. The Tamil Nadu Chief Minister has now directed the authorities to expedite the probe. The police are now looking into the role and conduct of the investigators who handled the case previously. Among the key questions is the alleged 90 crore rupee money trail linked to the case. Investigators are now examining whether the earlier probe was influenced, including allegations that money may have been paid to previous investigators. Meanwhile, Tamil Nadu Minister CTR Nirmal Kumar has slammed the Stalin government and said that they did not arrest Veeramani. DMK has hit back at TVK and said that there is no lapse on the side of the DMK. We were not showing any favoritism.
2: The very worst incident which has taken in the capital, and this has been like reported in the previous DMK government, and I don't know who has been behind this to close this case or subsidize this case or put this case on hold. Definitely without the then CM Stalin, no one would have been able to take such a call, because like it was a very high level business person, and the incident also like a very worst incident. Lot of kids have been harassed and raped. Definitely, it is a very sensitive issue, and definitely, like CM given instructions to go ahead with the full-fledged investigation. Definitely,
3: complaint has received on October 6th. FIR has filed on October 7th. Only the shadow has been seen. So they have not get any clear evidence. So they have not proceed again further. But at the same time, we will get the time from the court that whenever you get the strong evidence against Veeramani, you will proceed. So that permission we have obtained. Then only they can proceed. There is no lapse on DMK side. We are perfect.
1: So at this point of time, there are various allegations that the money may have been paid to previous investigators, and the Tamil Nadu Minister CTR Nirmal Kumar has slammed the Stalin government. This is the Veeramani Pokso case we're talking about. In 2019, there was a video which allegedly showed him taking money. The activist has also received a pen drive. The probe, as we speak, all right, we'll be tracking this very closely, but Sahil's parents are currently doing a press conference. Take a listen.
4: आज मला पत्रकार परिषद घ्यायचीच होती, बोलायचंच होतं तुमच्याशी, त्यामुळे ते बोलावलं होतं. हो, माझा मुलगा हा आय आय टी येथे दुसऱ्या वर्षाला शिकत होता, आणि अचानक त्याला मला फोन येतो आणि त्याची आत्महत्या होते असं सांगण्यात येते. परंतु प्रत्यक्षदर्शी पाहिलं आणि एफ आय आर प्रमाणे जे काही कलम लागलेले आहेत त्या कलमाप्रमाणे त्या आरोपीवर चौकशी झाली पाहिजे आणि त्यांना त्वरित अटक झाली पाहिजे. उसको वो टॉर्चर किया था, उसको त्याला त्याला भरपूर टॉर्चर केले होते. त्या टॉर्चर मुळे त्याने काय केलं याची चौकशी व्हायला पाहिजे. क्राईम ब्रांच त्यांनी हा तपास त्वरित पूर्ण करावा. जे आरोपी आहे शिरीष केदारे,
5: सूर्यनारायण डुला मस्ती अरेस्टेड,
4: यांना त्वरित अटक करावी अशी माझी विनंती आहे.
5: सूर्यनारायण डुला हॅज टोल्ड माय चाइल्ड दॅट ही केम फ्रॉम अ स्पेसिफिक कम्युनिटी. सूर्यनारायण डुला हॅज सेड माय सन दॅट ही कॅन गेट हिम इन टू अ प्रॉब्लम एनी टाइम.
4: न्याय मिळाला पाहिजे अशी माझी.
5: माय सन डिझर्व्ह जस्टिस.
4: साहेब तपास करतील, परंतु त्वरित त्यांना अटक झाली पाहिजे अशी मी सर्वांना विनंती करतो.
5: The investigation must be completed immediately and Professor Suryanarayan Dula must be arrested.
4: त्यांना अटक व्हायला पाहिजे हे माझी विनंती आहे. मला मी
5: त्याची समजून
4: थोडं सहन कर, त्यामुळे त्याला सहन करण्याची मी समज दिली. पण तेवढंच माझं हे झालं, परंतु त्याच्या जो अन्याय टॉर्चर अत्याचार झालेला आहे त्याला जातीवाचक शिविगाळ केलेलीच आहे, तो त्यांनी मला स्वतः सांगितलेली
5: आहे. That were made to him. That he belongs to a lower caste. Dula has told him, that there will be action against him and he can get him into a problem anytime.
4: तो त्यांनी फुटेज द्यावं आणि ते सिद्ध व्हावं. त्यांनी ते एकीकडे ते म्हणतात काय फुटेज
5: आपल्याकडे They are hiding their footages. Why is that? All the footages must be shared.
4: त्रास देत होते, त्याला टॉर्चर करत होते.
5: My child was the secretary of badminton in that IIT institute.
4: IIT advanced
5: 614 in all India competition that was held. Authorities are saying that he was copying. On one end, what are their preparations? Why and how would my child copy? What were the arrangements made by the IIT Bombay? I request everyone that Director Sunil Kedare and Professor Dula must be arrested.
4: And the authorities that आणि त्यांच्यावर जो
5: ऍट्रॉसिटी अप्लाइड अंडर दॅट दे मस्ट बी अरेस्टेड इमिडिएटली.
0: का त्यांच्यावर असा तुमचा जो आरोप आहे, मागणी आहे, कारण काय त्याला असं का अटक? तुम्ही पार्श्वभूमी बघा सर,
5: यू हॅव मस्ट लुक ॲट द हिस्ट्री ऑफ आयआयटी.
0: आतापर्यंत तुम्ही पार्श्वभूमी बघा, त्यामध्ये
4: विद्यार्थ्यांवरच आणि आतापर्यंतची तुम्ही पार्श्वभूमी बघा, त्यामध्ये अगोदरच्या एससी
5: विद्यार्थ्यांनी
4: क्राईम ब्रांच आया था, क्राईम ब्रांच का तब ये जो चौकशी आहे वो चालू आहे, चौकशी चालू आहे, वो चौकशी चालू करेंगे. लेकिन जो अपराध दर्ज हुआ है उसके बारे में जल्दी से जल्दी ये पूरे करके वो जो शिरीष केदारे और सत्यनारायण डुल्ला उसको अरेस्ट कीजिए, मेरी यही विनती है सबसे.
6: सर, एफआईआर में आपने क्या आरोप लगाए थे, क्या कुछ हुआ था जिसके बाद एट्रोसिटी एक्ट लगाया गया है, आपने क्या आरोप लगाए हैं दोनों प्रोफेसर, क्या क्या कहा है वो बता दीजिए.
4: इसमें एफआईआर में सब लिखा वाला है, इसके तैयार चौकशी होने को होना और उसको अरेस्ट करके जो है अरेस्ट होने के बाद ही ये सब ये हो जाएगा.
6: थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए क्या लिखा है.
4: ये अभी 13 तारीख को
6: क्या कहा था, क्या कुछ कहा,
4: जो एफआईआर में लिखा है वही सच बात है. हो, मैं एफआईआर की कॉपी सबको दूंगा. उसको जातिवाचक स्वीकार करे थे, वो ऊपर के जाति का है, ये कराए वाला है, सब उसको टॉर्चर करके और उसको उसकी आत्महत्या नहीं है, वो हुशियार तो हुशियार विद्यार्थी होता तो आत्मा हो, वो पढ़ा लिखा लड़का था, एडवांस क्रैक करना मामूली बात नहीं है. हाँ, आप उसका ऑल इंडिया रैंक देखिए, है उसके वो ये कुछ भी गलत आरोप करेंगे, वो बोलेंगे कि उधर का चीटिंग करके वो एडवांस क्रैक करके आया है, कुछ भी गलत बात करके ये मैटर को डिस्प्यूट कर रहे हैं, इसकी न्यायिक उसकी चौक उसको अरेस्ट करिए, यही मेरी विनती है।
6: आखिरी बार जब आपके बेटे ने आपसे बात की थी तो क्या आरोप लगाए थे उन्होंने, कुछ बताया था कि कितनी तकलीफ में है,
4: उसको
6: क्या कुछ होता है,
4: उसको पीड़ित हो रहा है। मैंने उसको समझाया कि बेटा आईआईटी का थोड़ा सहन कर ले, इसके बाद तेरी पूरी जिंदगी अच्छी है करके मैंने ये करा, यही मेरी गलती हो गई।
6: क्या बताया था लड़के ने आपको?
4: उसको इसमें लिखा है सर, सब तो सब बताया अभी सर, बताया ना सर, सब लिखा है अभी बताया ना सर,
7: मैं हिंदी में बात कर सकती हूँ, 1 मिनट आप जब शांत रहेंगे तभी मैं मेरा ओपिनियन दूंगी,
6: ओपिनियन मत दीजिए, जो हुआ है
7: जो हुआ है वो बताऊंगी, आप शांत रहिए, आप प्रेशर डाल रहे। मैं साहिल की मदर सोनाली वाकोड़े एज अ टीचर हूँ, मेरा बच्चा गया है, मैं उसकी मदर हूँ, मुझे मालूम है मुझे कितनी तकलीफ हो रही है। आप मेरा बच्चा नहीं तो आपका बच्चा समझकर उसको न्याय दीजिए, मुझे मालूम है मेरा बच्चा कैसा था, कितना टैलेंटेड था। मैं आपको सभी से यही गुजारिश करती हूँ, हाथ जोड़ के आपके पैर पड़ के गुजारिश करती हूँ कि मेरे बेटे को न्याय दीजिए, उस पर जो अत्याचार हुआ है उसके लिए न्याय दीजिए। आप पत्रकार है, आप भी खोज सकते हैं क्या हुआ है, और आईआईटी का जो बैकग्राउंड है वो चेक कीजिए, दलित बच्चों को क्यों वही क्यों सुसाइड कर रहे हैं? आपका भी काम है, आप भी नागरिक है समाज के, यू आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल दिस पर्सन। अभी आपके भी आपके भी बच्चे स्कूल में जाते हैं, अच्छे प्रशासन में जाते हैं। एक मिनट सर, आई वांट टू टॉक। आपके भी बच्चे जाते हैं, जब अच्छे प्रशासन में जाते हैं ना, वो सभी प्रशासन में ऐसा ही चलता है, लेकिन माँ बाप का काम क्या है, चलता है। हमने उसे मेंटली सपोर्ट किया कि तुम्हारा फ्यूचर बहुत अच्छा है बेटा, थोड़ा सहन कर। वो हमारी गलती हो गई, अगर हम उस दिन उसको लेके गए थे ना, मेरा बच्चा आज जिंदा होता।
4: वो सब चौकशी होने के बाद ही पता चला,
7: चौकशी
4: उसको अरेस्ट करिए, अरेस्ट करिए, अरेस्ट करिए,
7: एज अ टीचर
4: उसको अरेस्ट करिए,
7: एज अ मदर एंड फादर आई ट्रस्ट क्राइम ब्रांच, माझा मेरा प्रशासन पर पूरा विश्वास है, संविधान पर भी विश्वास है, मेरे बच्चे को न्याय मिलेगा। एफआईआर में अभी मेरे पति ने जो बताया वही सच है, पूरा पूरा बताया, पूरा बताया,
6: प्रॉपर हिंदी में आप बता दीजिए,
7: पूरा बताया। हम जब 13 तारीख को उसको मिलने गए थे उसके रूम के अंदर उन्होंने बताया कि पापा मुझे थोड़ा टॉर्चर हो रहा है, और जो महार जाते उसे मुझे शिविका दे रहे हैं, हाँ जातीय, तो हमने उसे समझाया कैसा चलता रहता है, और हमने उसको मॉरल सपोर्ट भी किया। यह हमारी गलती हो गई, यह अच्छा काम नहीं है कोई भी प्रशासन, लेकिन बच्चे की मेंटेलिटी उसको कुछ मालूम नहीं रहता ना, 19 साल का बच्चा था, 20 रनिंग चालू थी, वो क्या समझ सकता था। मुझे आपसे यही विनती करती हूँ कि मेरे बच्चों को प्लीज न्याय दे, अभी मेरी मेंटेलिटी नहीं है सर, नो कमेंट्स, मैं तो यहाँ से अभी मैं चक्कर का गिर जाऊंगी,
4: करनाचा छेड़ा लगावा, माझी कळकळीची विनंती आहे, त्यांना त्वरित अरेस्ट व्हावं, माझी कळकळीची विनंती आहे सर,
7: धन्यवाद।
6: वो हिंदी
7: बताए ना, अभी बताया ना,
4: एफआईआर में लिखा वाला है, एफआईआर की कॉपी आपको मैं दूंगा, एफआईआर की इसमें जो है वो होने को होना, मैं ज्यादा
7: मेरे जगह पर रखकर आप
8: किस तरह से टॉर्चर करती थी डुंडा आपके बेटे को,
4: ऊपर जाति का है, मैं ऊपर जाति का हूँ, आप नीचे जाति को, आपको मैं कौन से भी गलत इसमें फंसा के निकाल लूंगा, ऐसे करके वो टॉर्चर करके उसको ये कर रहा था, ऐसा मेरा आरोप है।
8: आपके बेटे के साथ ये कितने दिनों से चल रहा था?
4: ये 3 महीने से चल रहा था, जब से चालू हो गया है।
7: ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। नो कमेंट्स प्लीज, नो कमेंट्स प्लीज, नो कमेंट्स
1: प्लीज। गिविंग आउट दैट प्रेस ब्रीफिंग, सेइंग दैट प्रोफेसर डोला नीड्स टू बी अरेस्टेड। Sahil's parents met Sahil on the 13th and said that Sahil told his parents that he was being harassed because of his caste, with Professor Dola clearly saying that you belong to a lower caste. But at this, I want to go across to Sujata, who's joining me on the phone line. Sujata, that press briefing by Sahil's parents, they're clearly demanding for justice. They put all the blame on Professor Dola. Meanwhile, the crime branch has clearly not found any evidence against the professor so far. Sujata, we'll go across to Sujata in a moment from now. But that was a press briefing by Sahil's parents, who have alleged that caste bias in IIT Delhi. They're demanding justice, but so far, with the evidence, the CCTV footage, there has been no allegation, no evidence that has been found against Professor Dola. The parents have said that that the professor said that you belong to the lower caste and I belong to the higher caste and I can put you in any kind of a situation. These are what the parents are saying. They're demanding justice for their son. While on the other hand, the crime branch has not found any evidence, anything wrong against the professor. A short while ago, even the SCST cell of IIT Bombay said that Sahil never approached them with any issue, with any grievances or any caste slurs discrimination that he was facing at the IIT Bombay campus. Meanwhile, the mother said that Sahil complained to her that they met Sahil on September 13th and he complained that there was caste discrimination that was being done against him. However, with evidence suggests that Sahil did not approach the SCST cell of IIT Bombay and there was nothing, no information, no record of any complaint so far. Students have also now softened their stand, but the parents of Sahil, who lost a 20-year-old child, demanding for justice. I'll go across to Abhishek Avasthi, who joined me live from Mumbai. Abhishek, Sahil's parents demanding for justice. They're time and again saying there were caste-based slurs used against Sahil. However, crime branch and even the faculty at IIT Bombay has found no evidence against those claims made by Sahil's parents.
9: Definitely, you know, this is the allegations are very serious in nature, and both the parents were making a point out here that Sahil had informed them earlier also, but they told him that it is difficult to secure admission in such a prestigious organization, and you know, they told him to bear this for some time. And that's what the parents say was that our mistake, that their child had to take an extreme step. But at the same time, immediate arrest of Professor Dola and Kedare is the primary demand of both the parents. And they say that they have complete faith in the crime branch investigation which is going on. But at the same time, you know, they want justice for their child, justice for Sahil. And at the sequence of events, what his father, more importantly,
1: right, Abhishek,
9: that, you know, that it has not happened for
1: right, Abhishek,
9: time.
1: Of course, we'll be tracking the story very closely. Too many facets emerging in NET. We'll be tracking all angles of the story. But for now, we're slipping into a very short break. Come right back. Coming up next is Nationwide at 6 with my colleague Ankit Tyagi.

0: watching Go For Glory on NDTV, our special on Asian Games 2026. I'm Preeti Dahiya, and what a day it has been for India at the Asian Games. The first gold medal is here, and it has come from the women's cricket team. India have defended their Asian Games title in emphatic fashion, beating Sri Lanka by 147 runs in the final. There is more to celebrate, a medal assured in men's badminton, a win for the men's cricket team as well, and plenty of drama away from the competition arena. So let's take you through India's big moments on day three on Go For Glory. So the wait for India's first gold at these Asian Games is finally over, and the women in blue have delivered in style. India put up a massive 216 for the loss of 3 wickets in their 20 overs in this final against Sri Lanka, and they were powered by Smriti Mandhana's 79, Shefali Verma's 48, and a spectacular unbeaten 49 from Richa Ghosh. And then came the bowlers. Sri Lanka were bowled out for just 69 runs on board as India completed a 147 run victory. The defending champions, of course, have done it again. Asian Games gold for Indian women's cricket team. And of course, we also spoke exclusively to Deepthi Sharma, my colleague Deepika Roy. She's in Nagoya. Take a look at what Deepthi had to say.
1: दीप्ति, आपने गोल्ड को सिर्फ जीता नहीं है, डिफेंड किया है. यहाँ पे हांगजाओ में गोल्ड जीते थे, यहाँ पर गोल्ड डिफेंड करना कितनी बड़ी बात थी?
2: आई थिंक गोल्ड जीतना किसी के लिए भी बहुत बड़ी बात है. और जब आप अच्छा करते आ रहे हो इतने इतने सालों से, तो वो हार्डवर्क आपका दिखता है हमेशा एज अ टीम. और गोल्ड जीतना, मैंने बोला ना कि हमेशा एक दिल के बहुत करीब ही रहता है, क्योंकि हमें ट्रॉफीज की तो आदत है ही, लेकिन गोल्ड जीतना इट्स अ रियली बिग थिंग. और 2026 का फर्स्ट गोल्ड है, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है.
1: दीप्ति, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि सोना ना खरीदने के लिए, क्या आप सारे लड़कियों को बोलोगे सोना खरीदो नहीं, जाके सोना जीतो?
2: सोना खरीदोगे बाद में, पहले आई थिंक ये जीतने का मौका है. ये आई थिंक सितंबर ऐसा है कि जितना ज़्यादा आप जीत सकें. सितंबर नहीं चल रहा ना, सितंबर ही चल रहा है. ओके, पर ये कब तक है?

0: हर तरह से सबोटाज करने की कोशिश।
1: अब देखो बहुत सारे ग्लोबल चैलेंजेस आए हैं। रॉयटर्स जैसी एक संस्था ने इतनी फेक न्यूज़ चलाई कि मैरिड वुमेन को अलाउड नहीं करते। आई टोल द एंटायर इंडस्ट्री बी प्रिपेयर्ड फॉर सच इंसिडेंट्स नाउ।
2: और ये सिर्फ फिजिकल सबोटाज नहीं है, एक नैरेटिव का सबोटाज।
0: नैरेटिव का सबोटाज ये होगा, पक्का होगा, देखना।
3: He has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones. Brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else. Only on NDTV Network.
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
5: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
5: वाओ मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा,
6: सबका राजा आग प्योर मसाला।
7: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
8: Our pure Shahi Paneer Masala. Delicious, healthy, every day.

0: या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
1: बड़े बड़े इम्तिहानों से गुजरता है, वक्त तराशता है जिसे, तो जाने क्या क्या ना करता है। जब तक खुशबू सबसे बेहतरीन न बन जाए, आराम के लिए नहीं ठहरता है, जब तक लाजवाब न बन जाए उसे नहीं इत्मीनान है, तभी तो रिचमंड बनना नहीं आसान है।
2: Recently, in the month of Sawan, you went all the way to Haridwar with that Kavad. क्या ये cultural nationalism है? Tech पे ध्यान दे, क्या है क्या आपकी messaging? Kavad या computer?
3: क्या technology and tradition साथ में नहीं जा सकते हैं क्या? Does being progressive or being tech savvy, does it mean we uproot ourselves from our culture?
2: So Somnath and startups can both coexist.
3: That is what makes India so special. If we hold on to one and leave the other, then Padmaja, India will stop to be Bharat.
2: Before you did the Kavad Yatra, you also did the Iron Man.
4: Tere junu ke aage ambar panahe mange.
3: Essentially includes 1.9 kilometers of swimming in the ocean, 90 kilometers of cycling, 21.1 kilometer run. So you got to finish all of this in 8 hours 30 minutes. That's the cutoff. This year, unfortunately, I was a little lazy and I couldn't train.
2: We are going to knock that laziness off. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, excellent. Round of applause, guys. Excellent.

0: Good evening and welcome. Thanks very much for tuning in to NDTV. I'm Padmajal Joshi, and as always, when there is a story that the entire country is talking about, on that story, the buck stops here. 4 days after a young IIT Bombay student took his own life, the country is grappling with a difficult, uncomfortable, and perhaps politically incorrect question. Is caste being weaponized? Is an anti-discrimination law being used indiscriminately? And if yes, then what is the way out? These are the uncomfortable questions that today are being asked by not just a large section of students and faculty at IIT Bombay, but by people across the country. Because after the death by suicide of Sahil Vakode at IIT Bombay, not only was his exam invigilator, Professor Satyanarayan Dula, booked under the SC-ST Act, but Sahil's parents are now also demanding his immediate arrest. Leveling fresh allegations today, Sahil's family said that IIT Bombay director Professor Shirish Kedare and Professor Dula both tortured Sahil for several months, leading to his eventual death. Sahil's mother said that he was constantly discriminated against, and despite the mental support and counseling given to him by his family, the child finally simply could not take it anymore.
1: उसको जातिवाचक स्वीकार कर रहे थे, ऊपर के जाति का है, ये करे वाला है, सब उसको टॉर्चर करके और उसका उसको उसकी आत्महत्या नहीं है, वो हुशियार तो हुशियार विद्यार्थी होता। हाँ, आप उसका ऑल इंडिया रैंक देखिए, उसके वो ये कुछ भी गलत आरोप करेंगे, वो बोलेंगे कि उधर का चीटिंग करके वो एडवांस क्रैक करके आया है, उसको अरेस्ट करिए, यही मेरी विनती।
2: मेरे बेटे को न्याय दीजिए, उस पर जो अत्याचार हुआ है उसके लिए न्याय दीजिए, और IIT का जो बैकग्राउंड है वो चेक कीजिए। दलित बच्चों को क्यों, वही क्यों सुसाइड कर रहे हैं? आपका भी काम है, आप भी नागरिक है समाज के, यू आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल दिस पर। आपके भी बच्चे जाते हैं, जब अच्छे प्रशासन में जाते हैं ना, वो सभी प्रशासन में ऐसा ही चलता है, लेकिन माँ बाप का काम क्या है, चलता है। हमने उसे मेंटली सपोर्ट किया, कि तुम्हारा फ्यूचर बहुत अच्छा है बेटा, थोड़ा सहन कर। वो हमारी गलती हो गई, अगर हम उस दिन उसको लेके गए थे ना, मेरा बच्चा आज जिंदा होता।
0: The thing though is that in this extremely sensitive time, it is the parents' word against that of the students and faculty of IIT. Yes, a crime branch investigation will eventually decide what the truth really is. But for the time being, the faculty at IIT Bombay has consistently stepped up in support of Professor Dula and said that not only did he follow all the SOPs when correcting Sahil for alleged academic malpractice, but that Professor Dula also has an unblemished record when it comes to such issues. There has been no complaint against him for any kind of discrimination, leave alone caste discrimination. Today, even the students' body that initially protested after Sahil's death clarified that their protest, the march that they carried out, was not to presume guilt on the part of Professor, and that Sahil's death, and this is the most important part, they underscored the fact that Sahil's death should not be made a platform for anyone's political interests.
3: जो भी किया लाइक कॉपी करते हुए पकड़ा गया, फिर सुसाइड कर लिया। कॉपी करना इज अ डिफरेंट थिंग, बट सुसाइड करना इज अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग, तो उसके लिए दुख तो है। सब बच्चों के अंदर सिंपैथी है साहिल की, होनी भी चाहिए। पर फिर उसके बाद जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें डिमांड्स जो बच्चे रख रहे हैं वो डिमांड्स भी काफ़ी हद तक सही हैं, बहुत सारी सही डिमांड्स हैं। पर फिर जो केस लगाया गया हेडोला सर के ऊपर वो कंप्लीटली बेसलेस है मेरे हिसाब से। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन IIT Bombay में नहीं होता है, जितना मैंने जाना है अभी तक। मेरे साथ भी नहीं हुआ, मेरे किसी दोस्त के साथ भी कभी नहीं हुआ। मैं भी पहले प्रोटेस्ट में आया था, पहले दिन जब प्रोटेस्ट हो रहा था इवेंचुअली मेरे पता लगा ये इतना सही नहीं है इनका पॉइंट, ये लाइक SC-ST एक्ट जो लगा रहे हैं बिल्कुल सही नहीं है, उसका गलत यूज़ करा जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशन के एक्ट का हमारे।
4: रिसेंटली आपको पता है मिड सेमेस्टर एग्जाम चल रहा था, ही वॉज कॉट कॉपी करते हुए पकड़ा गया था, मोबाइल अंदर लेकर के चला गया था। सो जो प्रोफेसर ने कुछ बोला होगा उसके अकॉर्डिंग ही डिड सुसाइड। यहाँ पर IIT Bombay किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है, मतलब जो भी प्रोफेसर्स हैं, अगर आपको मार्क्स भी, अगर एग्ज़ाम में मार्क्स दिए जाते हैं वो रिलेटिव होते हैं, जिसका जो परफॉर्मेंस होता है उसके अकॉर्डिंग होता है, अंदर किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है।
5: सेंसस नाउ इट वाज बीन ट्राइड टू मेक, वी ऑल अग्री ऑन वन थिंग कि चेंजेस नीड टू बी ब्रॉट टू हाउ स्टूडेंट वेलफेयर इज डन एंड स्टूडेंट वेलनेस सेल में साइकियाट्रिस्ट और होने चाहिए, थिंग्स लाइक दैट। स्टूडेंट्स वॉइस शुड बी हर्ड व्हेन डिसीजंस आर मेड, बट आई थिंक स्टूडेंट्स डिसएग्री ऑन द ट्रीटमेंट जो प्रोफेसर दुल्ला को किया जा रहा है एंड द कास्ट एंगल व्हिच इज बीइंग ब्रॉट इन, व्हिच इज नॉट द केस एट ऑल।
0: So that brings us to the simple question. Was caste used to cloud a terrible, terrible loss of life? Is this more about caste politics or a cover-up of a life lost to discrimination? Who really is weaponizing caste in this case of death by suicide? Joining us today on the show, we have Mohan Sonthi. He is a former student of IIT Bombay himself, passed out in 1995. We have Professor Badri Narayan Tiwari, Vice Chancellor of TIS, and we have Priyanka Bharti, spokesperson of RJD. Mohan Sonthi, I want to start by asking you, you know, because the parents are unequivocal that this was a case of caste discrimination, that this is a record of the IITs. In fact, the mother has gone so far to say that the IITs should be investigated of the way that they treat children of a certain community. What makes you so sure that that wasn't a factor at play here?
6: Well, the first thing we need to understand is basically, I don't think that is the case, because we had lived in those times and I've been there in 1990s and I haven't heard any of these kind of discriminations. All right, but the first thing we need to understand, I mean, as engineers, I would say that a system should be built. It should run not just because of good people. It should run in spite of bad people. That is a good design, and that is the issue with the laws as well. The question we need to see is if the law is abusable. And that seems to be the case here, and this is a law that was passed in 1989.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
2: देश का टायर जेके टायर।

0: सेहतमंद हर रोज।
1: बड़े बड़े इम्तिहानों से गुजरता है, वक्त तराशता है जिसे, तो जाने क्या क्या ना करता है। जब तक खुशबू सबसे बेहतरीन न बन जाए, आराम के लिए नहीं ठहरता है, जब तक लाजवाब न बन जाए उसे नहीं इत्मीनान है। तभी तो रिचमंड बनना नहीं आसान है।
2: In the month of Sawan, you went all the way to Haridwar with that Kavad. क्या ये cultural nationalism है? Tech पे ध्यान दे। क्या है क्या आपकी messaging? Kavad या computer?
3: क्या technology and tradition साथ में नहीं जा सकते हैं क्या? Does being progressive or being tech savvy, does it mean we uproot ourselves from our culture?
2: So Somnath and startups can both coexist.
3: That is what makes India so special. If we hold on to one and leave the other, then Padmaja, India will stop to be Bharat.
2: Before you did the Kavad Yatra, you also did the Iron Man.
4: Tere junu ke aage, ambar panahe mange.
3: Essentially includes 1.9 kilometers of swimming in

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।

0: जिंदगी आपकी अच्छी है, ऐसे करके उसको समझाया। लेकिन मेरे को पता चला कि उसकी आत्महत्या हुई है, तो करके हमने उसके जो जिनके उन्होंने मेरे को नाम बताए थे उनके तरफ मैंने एट्रोसिटी एक्ट के मामला दर्ज कराया, और आत्महत्या को जिन्होंने उन्होंने प्रवृत्त कराया तो वो कलम से उन पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। तो अब एफआईआर दर्ज हो चुकी है, तो इसके बावजूद क्राइम ब्रांच को चालू है वो, तो उसको तो उसके बाद भी वो उनको पूरा जो सबूत है ना, सबूत सभी है हमारे पास, तो उनको अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे मैडम? मेरी
1: जी
0: मांग
1: आप
0: है
1: कह रहे हैं
0: अरेस्ट
1: आपके
0: करो
1: पास
0: उनको।
1: जी आप कह रहे हैं कि अब सबूत है, बट कॉलेज ने भी कहा है कि SC ST सेल जो है वहां पे कोई साइल ने कोई कंप्लेन नहीं की वो, और जो क्राइम ब्रांच पुलिस भी ये कह रही है कि कोई एविडेंस कोई सबूत नहीं है कि कोई कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हुआ
0: नहीं,
1: है प्रोफेसर
0: एविडेंस है
1: डोला
0: ना
1: ने कहा।
0: मैडम, अभी जब केदारे सर वो बच्चों को मिलने आए थे, उनके वो मांगने जो उनके जो मांग डिमांड थी, डिमांड का लेटर लेके आए थे, तब उनके पास साथ जो लड़की थी उन्होंने सीधा सीधा वो क्लिप में बताया है कि यहाँ जातिवाद चल रहा था, यहाँ जातिवाद, तो वो सुन रहे थे। आप वो फुटेज देखिए, आपको पता चलेगा कि जातिवाद, वो जब उतने आरोप हो रहे थे तो वो कुछ नहीं कर रही थी, केदारे सर कुछ नहीं कर रहे थे, तो उनको वो मालूम, उनको ये है कि मालूम है कि ये सही बात है करके उन्होंने उसको विरोध नहीं करे। हाँ
1: जब आप साहिल से लास्ट कब मिले थे?
0: 13 तारीख,
1: आप जब 13 तारीख को
0: 13 तारीख
1: साहिल से मिले थे, और 13 तारीख को, और जब साहिल ने कहा कि उसके साथ जातिवाद हो रहा है, तो आपने कभी कभी कोई कंप्लेन क्यों नहीं की? साहिल ने कोई SC ST सेल में कोई कंप्लेन कभी क्यों नहीं की?
0: 13 तारीख को बताया था मेरे को, और अगले 2-3 दिन में उसका फोन आया है। और ये ऐसा हो रहा मैडम, वो उनको उस पर चीटिंग का आरोप कर रहे थे उन्होंने, और बाद में वो ही माफी मांग रहे कि उसको ऐसी चीटिंग हुई नहीं। इसमें क्या समझेंगे हम, आप बोलिए ना। हाँ,
1: जी हम
0: एक
1: बहुत
0: तरफ
1: माफी
0: बोल रहे
1: चाहते हैं कि
0: पहले
1: आपके
0: बच्चे
1: साथ
0: ने
1: ये
0: चीटिंग करी, और एक प्रोफेसर एक दिन लगातार 2009 से एक ही पद पर है, इतने बड़े IIT जिनका नाम है मायावी नगरी के, वही का ब्रांड है वो, वहाँ एक टीचर 2009 से यानी 15-16 साल से एक ही इस पर रह रहा, ये गलत नहीं क्या? 3 साल के ऊपर नहीं रहने को ना।
1: अच्छा ठीक है, वो तो अलग बात है। हम आपसे कह रहे हैं कि जब साहिल ने आपको बताया कि उसके साथ बिल्कुल गलत हो रहा है, जातिवाद हो रहा है, तो आपने कंप्लेन क्यों नहीं की 13 तारीख को जब
0: कंप्लेंट
1: बताया
0: की ना
1: साहिल ने
0: मैडम,
1: ये सब?
0: कंप्लेंट की ना, एफआईआर दर्ज हुआ है हमारा, एफआईआर
1: वो आपने कब
0: दर्ज
1: किया
0: हुआ
1: है?
0: है।
1: वो आपने अब किया है?
0: हाँ, हमने एफआईआर दर्ज किया, वकील साहब को मालूम है ना। हाँ,
1: जी आपने अब FIR दर्ज किया। हम कह रहे हैं कि जब आप साहिल से मिले थे 13 तारीख, और जब साहिल ने कहा कि मेरे साथ ये सब हो रहा, आपने तब कंप्लेन क्यों नहीं की?
0: मैं बोला इतना बड़ा IIT में उसका लॉस होगा, उसको समझाया बेटा, विरोधक रहेंगे 2 साल ऐसे ही निकाल ले, तेरी जिंदगी आगे अच्छी है, पर हमने इग्नोर किए उसको।

0: तो यहाँ के एलुमनाई ओजी है।
1: जब ये रील बनाते हैं तो वायरल हो जाती है।
2: ऑलवेज चीयर फॉर भारत।
1: जब ये ट्वीट करते हैं तो वो ट्रेंड बन जाता है। जब ये रेडियो शो पे जाते हैं तो वर्ल्ड का नंबर वन रेडियो शो बन जाता है। जब ये कोई स्लोगन देते हैं तो वो हैशटैग बन जाता है।
2: पबजी वाला है।
3: The internet moves fast. A meme can go viral in the morning.
4: Man.
3: A hashtag can explode by afternoon. A video can rake up millions of views by evening. And before the day is over, what began on a phone screen can become a part of the national conversation.

0: टेक्नोलॉजी।
1: भारत के प्लांट से निकलकर हमारी चिप देश और दुनिया के कस्टमर्स तक पहुंचना शुरू हुई है।
0: इंडियाज फ्यूचर
2: ट्रॉफी यहाँ पे लेकर आ पाए और आपने आज हमारी खुशी वो दो गुना और ज्यादा बढ़ा दिया है।
3: सचमुच में आप लोगों ने बहुत बड़ा काम किया है।
0: यूथ
4: हाँ लूज फुल
5: मुझे हाथ मूव करना है। हाँ। आगे पीछे
4: जोर से मारिए, जोर से मारिए। हाँ मारिए।
0: And even lighter, more personal moments. Prime Minister Modi's digital journey began in the era of Facebook and Twitter. It has now entered the age of Reels, Shorts and creator culture. The political feed is now a space where leaders, creators and audiences meet. And Prime Minister Modi has built one of the world's largest political digital audiences by staying present across that changing landscape.

0: part of the ongoing investigation. And just short while before this, my colleague Rahesha spoke to the father of Sahil Wakore. Let's listen in to what he and the lawyer of Sahil had to say.
1: हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र जी. सबसे पहले आपकी क्या मांग है, आपकी सबसे पहली क्या मांग है? अभी
2: मेरा बेटा आईआईटी ओएम में सेकंड ईयर में एनर्जी इंजीनियर करके पढ़ाई कर रहा था. उनका उनको आत्महत्या हुई करके हमारे को मैसेज आया, फोन आया. हाँ, उसके वो देखने के बाद हमने उससे 13 तारीख से मेरी बात हुई थी. वो बोल रहा है कि यहाँ जातिवाद के इस पर टॉर्चर हो रहा. मैंने उसको समझाया, बेटा इतने बड़े इसमें कुछ हो सकता है, विरोधक रहते थोड़ा शांत हो जा करके मैंने उसको समझाया. आगे की जिंदगी आपकी अच्छी है, ऐसे करके उसको समझाया. लेकिन मेरे को पता चला कि उसकी आत्महत्या हुई है, तो करके हमने उसके जो जिनके उन्होंने मेरे को नाम बताए थे उनके तरफ मैंने एट्रोसिटी एक्ट का मामला दर्ज कराया. और आत्महत्या को जिन्होंने उन्होंने प्रवृत्त कराया तो वो कलम से उन पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है. तो अब एफआईआर दर्ज हो चुकी है तो इसके बावजूद क्राइम ब्रांच को चालू है वो तो उसके बाद भी वो उनको पूरा जो सबूत है ना, सबूत सभी है हमारे पास, तो उनको अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे मैडम? मेरी मांग है अरेस्ट करो उनको.
3: जी आप कह रहे हैं कि अब सबूत है, बट कॉलेज ने भी कहा है कि SC ST सेल जो है वहां पे कोई साहिल ने कोई कंप्लेन नहीं की वो, और जो क्राइम ब्रांच पुलिस भी ये कह रही है कि कोई एविडेंस कोई सबूत नहीं है कि कोई कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हुआ है.
2: प्रोफेसर डोरा ने मैडम जब केदारे सर वो बच्चों को मिलने आए थे, उनके वो मांगने जो उनके जो मांग डिमांड थी, डिमांड का लेटर लेके आए थे, तब उनके साथ जो लड़की थी उन्होंने सीधा सीधा वो क्लिप में बताया है कि यहाँ जातिवाद चल रहा था, यहाँ जातिवाद, तो वो सुन रहे थे. आप वो फुटेज देखिए, आपको पता चलेगा कि जातिवाद वो जब उतने आरोप हो रहे थे तो वो कुछ नहीं कर रही थी केदारे सर, कुछ नहीं कर रहे थे. तो उनको उनको ये है कि मालूम है
0: And now let's take your stories that are making headlines down south. A fresh flashpoint is emerging in Tamil Nadu over the proposed Secretariat Assembly complex. Fishermen in that area have now announced a protest on September 29, demanding that the government should drop the proposed 1200 rupees crore project. The fishermen had given the government time till September 21st to respond to their concerns after a consultative meeting. But with the deadline now over and no response from the government, they have decided to take their protest to the streets. This comes amid growing political opposition to the proposed secretariat complex, with concerns being raised over its impact on the fishing communities and their livelihoods as well. We're getting in political reactions from the DVK and the DMK on that story. Let's listen into that.
4: Chief Minister will not do anything against the people, or if any segment of people are suffering or anything, definitely CM under law. I think they are doing a detailed project report, and definitely CM will do a review, and then the announcement will be done. We'll wait for that. Thank you.
5: It's going to affect the people living in that area. Not only that, the fishermen, it's a very strong fishermen living area where we have built many houses for them. And there are 13 schools in that area. Apart from that, there is already a coastal regulatory zone. Before 500 meters, you cannot construct any tall building. All these things are there. And I don't know how they are going to build the secretariat, whether they have approached the coastal regulatory authority and got permission from them, we don't know. In all ways, that area is not suitable for constructing a secretariat.
0: Well, the probe into the Viramani Pokso case is now widening, with investigators examining not just the allegations against the accused, but also the circumstances surrounding the earlier investigation. The Tamil Nadu Chief Minister has directed the authorities to expedite the probe. The police is now looking into the role and conduct of the investigators who handled the case previously. Among

0: recently in the month of Sawan, you went all the way to Haridwar with that Kavad. Kya ye cultural nationalism hai, tech pe dhyan de? क्या है क्या आपकी मैसेजिंग, कावड़ या कंप्यूटर?
1: क्या टेक्नोलॉजी एंड ट्रेडिशन साथ में नहीं जा सकते क्या? डज बीइंग प्रोग्रेसिव और बीइंग टेक सेवी, डज इट मीन वी अप्रूट आवरसेल्व्स फ्रॉम आवर कल्चर?
0: सो सोमनाथ एंड स्टार्टअप्स कैन बोथ कोएग्जिस्ट,
1: दैट इज व्हाट मेक्स इंडिया सो स्पेशल. इफ वी होल्ड ऑन टू वन एंड लीव द अदर, देन पद्मजा, इंडिया विल स्टॉप टू बी भारत.
0: Before you did the Kavad Yatra, you also did the Iron Man.
2: Tere junu ke aage ambar panahe mange.
1: Essentially includes 1.9 kilometers of swimming in the ocean, 90 kilometers of cycling, 21.1 kilometer run. So you got to finish all of this in 8 hours 30 minutes. That's the cutoff. This year, unfortunately, I was a little lazy and I couldn't train.
0: We are going to knock that laziness off. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, excellent. Round of applause, guys. Excellent.

0: Good evening and welcome. Thanks very much for tuning in to NDTV. I'm Padmaja Joshi, and as always, when there is a story that the entire country is talking about, on that story, the buck stops here. 4 days after a young IIT Bombay student took his own life, the country is grappling with a difficult, uncomfortable, and perhaps politically incorrect question. Is caste being weaponized? Is an anti-discrimination law being used indiscriminately? And if yes, then what is the way out? These are the uncomfortable questions that today are being asked by not just a large section of students and faculty at IIT Bombay, but by people across the country. Because after the death by suicide of Sahil Vakode at IIT Bombay, not only was his exam invigilator, Professor Satyanarayan Dula, booked under the SC-ST Act, but Sahil's parents are now also demanding his immediate arrest. Leveling fresh allegations today, Sahil's family said that IIT Bombay director Professor Shirish Kedare and Professor Dula both tortured Sahil for several months, leading to his eventual death. Sahil's mother said that he was constantly discriminated against, and despite the mental support and counseling given to him by his family, the child finally simply could not take it anymore.
1: उसको जातिवाचक स्वीकार कर रहे थे, ऊपर के जाति का है, ये करे वाला है, सब उसको टॉर्चर करके और उसका उसको उसकी आत्महत्या नहीं है, वो हुशार तो हुशार विद्यार्थी होता। हाँ, आप उसका ऑल इंडिया रैंक देखिए, उसके वो ये कुछ भी गलत आरोप करेंगे, वो बोलेंगे कि उधर का चीटिंग करके वो एडवांस क्रैक करके आया है, उसको अरेस्ट करिए, यही मेरी विनती।
2: मेरे बेटे को न्याय दीजिए, उस पर जो अत्याचार हुआ है उसके लिए न्याय दीजिए, और IIT का जो बैकग्राउंड है वो चेक कीजिए। दलित बच्चों को क्यों, वही क्यों सुसाइड कर रहे हैं? आपका भी काम है, आप भी नागरिक है समाज के, यू आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल दिस पर। आपके भी बच्चे जाते हैं, जब अच्छे प्रशासन में जाते हैं ना, वो सभी प्रशासन में ऐसा ही चलता है, लेकिन माँ बाप का काम क्या है, चलता है। हमने उसे मेंटली सपोर्ट किया, कि तुम्हारा फ्यूचर बहुत अच्छा है बेटा, थोड़ा सहन कर। वो हमारी गलती हो गई, अगर हम उस दिन उसको लेके गए थे ना, मेरा बच्चा आज जिंदा होता।
0: The thing though is that in this extremely sensitive time, it is the parents' word against that of the students and faculty of IIT. Yes, a crime branch investigation will eventually decide what the truth really is. But for the time being, the faculty at IIT Bombay has consistently stepped up in support of Professor Dula and said that not only did he follow all the SOPs when correcting Sahil for alleged academic malpractice, but that Professor Dula also has an unblemished record when it comes to such issues. There has been no complaint against him for any kind of discrimination, leave alone caste discrimination. Today, even the students' body that initially protested after Sahil's death clarified that their protest, the march that they carried out, was not to presume guilt on the part of Professor, and that Sahil's death, and this is the most important part, they underscored the fact that Sahil's death should not be made a platform for anyone's political interests.
3: जो भी किया, लाइक कॉपी करते हुए पकड़ा गया, फिर सुसाइड कर लिया। कॉपी करना इज अ डिफरेंट थिंग, बट सुसाइड करना इज अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग। तो उसके लिए दुख तो है, सब बच्चों के अंदर सिंपैथी है साहिल की, होनी भी चाहिए। पर फिर उसके बाद जो प्रोटेस्ट हो रहा है, उसमें डिमांड्स जो बच्चे रख रहे हैं, वो डिमांड्स भी काफ़ी हद तक सही हैं, बहुत सारी सही डिमांड्स हैं। पर फिर जो केस लगाया गया हेडुल्ला सर के ऊपर, वो कम्प्लीटली बेसलेस है मेरे हिसाब से। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन IIT Bombay में नहीं होता है, जितना मैंने जाना है अभी तक। मेरे साथ भी नहीं हुआ, मेरे किसी दोस्त के साथ भी कभी नहीं हुआ। मैं भी पहले प्रोटेस्ट में आया था, पहले दिन जब प्रोटेस्ट हो रहा था, इवेंचुअली मेरे पता लगा ये इतना सही।

0: that none of these parties have been able to ensure safety for women.
1: Abhi Delhi Police कार्रवाई कर रही है, एक बार सभी आरोपी पकड़े जाएं, उसके बाद में

0: को, और जब साहिल ने कहा कि उसके साथ जातिवाद हो रहा है, तो आपने कभी कभी कोई कंप्लेन क्यों नहीं की? साहिल ने कोई SC ST सेल में कोई कंप्लेन कभी क्यों नहीं की?
1: तेरा तारीख को बताया था मेरे को, और अगले 2-3 दिन में उसका फोन आया है। और ये ऐसा हो रहा मैडम, वो उनको उस पर चीटिंग का आरोप कर रहे थे उन्होंने, और बाद में वो वही माफी मांग रहे कि उसको ऐसी चीटिंग हुई नहीं। इसमें क्या समझेंगे हम, आप बोलिए ना। हाँ,
0: जी, हम
1: एक
0: बहुत
1: तरफ
0: माफी
1: बोल रहे
0: चाहते हैं कि
1: पहले
0: आपके
1: बच्चे
0: साथ
1: की
0: ये
1: मैंने चीटिंग करी, और एक एक प्रोफेसर एक डीन लगातार 2009 से एक ही पद पर है। इतने बड़े IIT जिनका नाम है मायावी नगरी के, वही का ब्रांड है वो, वहाँ एक टीचर 2009 से यानी 15-16 साल से एक ही इस पर रह रहा, ये गलत नहीं है? 3 साल के ऊपर नहीं रहने को ना।
0: अच्छा ठीक है, वो तो अलग बात है। हम आपसे कह रहे हैं कि जब साहिल ने आपको बताया कि उसके साथ बिल्कुल गलत हो रहा है, जातिवाद हो रहा है, तो आपने कंप्लेन क्यों नहीं की 13 तारीख को जब
1: कंप्लेंट
0: बताया
1: की ना
0: साहिल ने
1: मैडम,
0: ये सब?
1: कंप्लेंट की ना, FIR दर्ज हुआ है हमारा, FIR
0: वो आपने कब
1: दर्ज
0: किया?
1: हुआ है।
0: वो आपने अब किया है?
1: हाँ, हमने FIR दर्ज किया, वकील साहब को मालूम है ना।
0: जी, आपने अब FIR दर्ज किया। हम कह रहे हैं कि जब आप साहिल से मिले थे 13 तारीख को, जब साहिल ने कहा कि मेरे साथ ये सब हो रहा है, आपने तब कंप्लेन क्यों नहीं की?
1: मैं बोला इतना बड़ा IIT में उसका लॉस होगा, इसको समझाया बेटा, विरोधक रहेंगे 2 साल ऐसे ही निकाल ले, तेरी जिंदगी आगे अच्छी है, पर क्या हमने इग्नोर किए उसको?

0: He's the only leader in the entire world who has following of more than 100 million people. So I'm sure he's doing something right. Now, when it comes to doing something right, it is not just communicating with people, not just being on Instagram, not just being on social media and trying to be an influencer. He's trying to use the platform native language of that platform. He's trying to use the language which Instagram needs, which Gen Z understands.
1: There's another reason short form video matters. It compresses politics. A long policy speech can be reduced to a single sentence. A complicated political argument can become a 30-second clip. A reaction can become the story. And sometimes the clip travels much further than the real speech. And then there's another format that has transformed the way politicians communicate online. Podcasts, long-form conversations, a setting that feels like a political rally and more like a conversation.
2: जैसे आप कह रहे थे कि पॉलिटिशियन जब आप बनना चाहते हैं तो इट्स नॉट अबाउट यू, यू आर सेकेंडरी. जो लोग हैं जिनके लिए आप पॉलिटिशियन है वो पहला बन जाते हैं.
3: जब मुख्यमंत्री बना तो मेरा एक भाषण था और सहज रूप से मैंने कहा था मैं मेहनत करने में कोई कमी नहीं रखूंगा, दूसरा मैं मेरे लिए कुछ नहीं करूंगा और तीसरा मनुष्य हूं, गलती हो सकती है, गलतियां होती होगी, मुझसे भी होती होगी, मैं भी मनुष्य हूं, मैं कोई देवता थोड़ा हूं.
1: नो पोडियम, नो कैंपेन स्टेज, नो ट्रेडिशनल टेलीविजन इंटरव्यू फॉर्मेट, जस्ट माइक्रोफोन्स, कैमरास एंड अ कन्वर्सेशन दैट कैन रन फॉर आवर्स.
4: You have a reputation for being a decisive leader. So can you walk me through on this topic of ideas, how you make decisions, what's your process? So for instance, when facing a high stakes choice,
5: चीजों को grassroot level पर स्थितियों के विषय में मेरी first hand information है. किसी से पूछा हुआ, जाना हुआ, ऐसा किताबों के द्वारा नहीं पाया है. गवर्नेंस की दृष्टि से देखें तो मेरे पास कोई प्रकार का बैगेज नहीं है कि जिस बैगेज को लेकर के मुझे दबे रहना है, उसके आधार पर मेरा चलना है, वो नहीं है.
1: प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज इंक्रीजिंगली स्टेप्ड इनटू दिस स्पेस एज वेल, अपीयरिंग ऑन पॉडकास्ट्स एंड लॉन्ग फॉर्म डिजिटल कॉन्वर्सेशंस that allow audiences to see a different side of the political leader. And the podcast does something traditional political communication often cannot. It creates room for the conversation to breathe. Stories, personal experiences, politics.
5: Dimagi naksal mauke ki talash mein hai. Hinsa arajakta ke wo raaste khod rahe hain.
1: Technology.
5: भारत के प्लांट से निकलकर हमारी चिप्स देश और दुनिया के कस्टमर तक पहुंचना शुरू हुई है.
1: इंडियाज फ्यूचर
6: ट्रॉफी यहां पे लेकर आ पाए और आपने आज हमारी खुशी वो दो गुना और ज्यादा बढ़ा दी है.
3: सचमुच में आप लोगों ने बहुत बड़ा काम किया है.
1: यूथ
7: हानूस फुल
8: मुझे हाथ मूव करना है. हाँ. आगे पीछे मारिए,
7: जोर से मारिए, जोर से मारिए, हाँ मारिए.
1: एंड इवन लाइटर मोर पर्सनल मोमेंट्स. प्राइम मिनिस्टर मोदीज डिजिटल जर्नी बिगैन इन द एरा ऑफ फेसबुक एंड ट्विटर. इट हैज नाउ एंटर्ड द एज ऑफ रील्स, शॉर्ट्स एंड क्रिएटर कल्चर. The political feed is now a space where leaders, creators, and audiences meet. And Prime Minister Modi has built one of the world's largest political digital audiences by staying present across that changing landscape.

0: आपने कभी देखा कि दिल्ली पुलिस किसी बलात्कारी को सड़क पर डंडे मारते हुए ले जा रही हो?
1: नहीं।
0: मगर जेन जी के बच्चों के साथ डंडों से मारपीट